0: पाकिस्तान की शान। वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879-0312-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबॉरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
7: आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू, बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
1: लालन साईं मुझे लालन आ गया।

0: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252578 6।
1: जी हा 2315525786
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
0: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।

0: रखे हो तो आवाज भी सिर की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अक्सर मान जो सवाल तो असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने ते जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ, हाई रिस्क हुंदा आन। उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाराए।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435, एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵੀ।

जोरड़ी गे निंगर पोत केतरा ही बार उरड़ी में मुबतला गोठ अकबर गबोल में उरड़ी की बीमारी पखेड़ वही उरड़ी में मुबतला सालन जो शाजे वलिद मुनवर गबोल फोत वो केतरा ही बार बीमारी में वरतल सेहत खाते नोटिस न वरतो गोठाणा परेशानी जो शिकार।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि

0: तवरी बिहर छो प्यारे मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए असाजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
2: 0331252578
3: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: जिसकी तामीर पर होती है वाह वाह।
1: मजार है वो मीर मासूम शाह का,
0: शहर पर करता है राज,
1: निराला है सक्कर बैराज, अय्यूब ब्रिज भी एक शाहकार है।
0: अलग ही
1: सक्कर के अंदाज,
0: जिनकी है बस एक ही आवाज,
1: जीए सक्कर FM 88।
0: सक्कर की आवाज, जीए FM 88।
1: सिंध की आवाज।

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर शेयरिंग इन टू रेडियो एफएम 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ही रुखसार सिंध की आवाज। अभी ये कैसे हैं आप? आई होप शुक्रिया जी, जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टप सक कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हल के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक। सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं अभी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपका मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत से साथ जो कि आज भी जारी है सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। तो प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी 11:25 पाकिस्तान के मियारी बात तमाम तो लोग ही घड़ियों में बज रहा है। इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पर भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट अदर देन अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। दखल की खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलू। तो मेरी आवाज गली और शहरों, शहरों, शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे पुरस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दोस्त कहेंगे बखैर आगले जी आया सब बंजौर शाम जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में इंक्लूड करने जा रही हूँ प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और इस गाने को हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, गाने के साथ आगे चलेंगे और बताएंगे कि क्या होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: FM88.
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबॉरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
9: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
0: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
7: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: साथ साथ नेक्स्ट कॉलर लेते हैं जी और चेक करते हैं कॉलर कहाँ से. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो कॉल लग गई पता नहीं चल रहा इनको. ओके 0300 1134 88 के ऊपर एक और कॉलर लेते हैं और चेक करते हैं कॉलर कहाँ से. हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से.
1: मैं
0: नदीम अहमद कैसे हैं. ठीक है पहली दफा कॉल कर रहे हैं.
1: मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ.
0: सुनते रहते हैं कैसा लगता है.
1: अच्छा लगता है.
0: अच्छा लगता है जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे.
1: नहीं नहीं हमने गाना नहीं सुना. आप अपने पसंद से लगा लें.
0: ओके और कुछ कहना है.
1: बस आप खुश रहे.
0: थैंक यू सो मच. हाफिज 0300 1134 88 इसके ऊपर कॉल करेंगे. नेक्स्ट कॉलर रिसीव करेंगे और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: बाजी सर कैसी हो. ठीक हो. खुश.
0: मैं ठीक हूँ. कौन बात कर रहे हैं.
1: बाजी मोहम्मद आलम बात कर रहा हूँ. करम कदरा.
0: मोहम्मद आलम पहली दफा कॉल की है
1: जी. एक बार कॉल पहले लगी.
0: चलें जबरदस्त प्रोग्राम सुनते हैं तो गाने सुना दें.
1: हाँ प्रोग्राम सुनता हूँ बाजी. गाना मुझे नहीं आता.
0: गाना नहीं आता. ओके मैं सुना दूँ.
1: हाँ जी बिल्कुल सुनाओ.
0: ओके फिर आपने बहुत सारा ख्याल रखें.
1: हमारा गाना जो है ना फेवरेट पसंद है वो सनी मेहर वाले फूल के गुलाब के.
0: ये वाला सुना दूँ.
1: हाँ जी जी.
0: तो थोड़ा सा गा के तो सुनाए ना.
1: बस यही आता है. जैसे सुनाया तो नहीं गए. इतना ही आते हैं जी.
0: चले जबरदस्त जी.
1: याद होते अल्लाह हाफिज.
0: अल्लाह हाफिज. थैंक यू. और इसी के साथ नहर वाले पुल वाला गाना. नहर वाले पुल वाला गाना हम प्ले कर रहे हैं. सो ये नहर वाले पुल वाला गाना आ चुका है जी हमारी प्लेलिस्ट में. तो सुनेंगे इंजॉय करेंगे थोड़ा सा आगे से प्ले करेंगे मेरे ख्याल से.

बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना. थैंक यू सो मच. हाफिज. और गाना प्ले कर चुकी हूँ.

0: देखा मिलो, बस तुम ही देखा करो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो।
1: ओके, वेरी नाइस। और कुछ कहेंगे?
0: थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। इस्माइल किशोर, अल्लाह हाफ़।

ओके okay, जी इसमें किशोर का हम गाना प्ले करने जा रहे हैं. और जब मैंने ये ओएसटी सर्च किया है ना, तो मेरे पास दो तीन तरह के ओएसटी आए हैं इसी ड्रामा के. तो अब देखते हैं कि ये एग्जैक्ट वो ही है जो इसमें किशोर ने हमें सुनाया था या कोई और है.

ओके जी, आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरह से है कि आपने मुझे क्या क्या दिखाना है कि लंबी लकड़ी से लटके लाल लीमू लटके लंबी लकड़ी से, ठीक है, ये कहना है. और हमारा जो अगला सेगमेंट होगा 12 बजे के बाद, दैट इज हरा भरा पाकिस्तान. और हरा भरा पाकिस्तान के बाद हम करेंगे बोलो तो माने सेगमेंट, ठीक है. तो ये हम करेंगे और इसी के साथ हम न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक दोनों की तरफ जाएंगे, ठीक है जी, इसी गाने के साथ. और वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

चंदो ईरानी सियासी अस्करी क्यादत से मुलाकातू कंदो अमेरिका ईरान विच में जारी छिकताण के खात्मे समेत खिते की सूरतयाल से गाल वेंदी आबन हरमुज की बहाली वो मामलो भी गौर हेठ इंद सिक्योरिटी फोर्सेज जो केपी के बलूचिस्तान में दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई 11 दहशतगर्द मार सिक्योरिटी जरिये मूजिब केपी के इलाके बनून लाडा में 7 दहशतगर्दन के जहनुम भेड़ो वो बलूचिस्तान के इलाके खुदार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मार दहशतगर्दन जो एक थाक भी तबाह बारूदी मवाद हथ वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सेज के भेटा पेश शहबाज शरीफ चाहे तो दहशतगर्दी खिलाफ जंग में कौम फोर्सेज से गडी थल है नवाज लीग पारा इफ्तखार गिलानी के आजाद कश्मीर को वजीर आजम बनाने जो फैसलो वजीर आजम हाउस में मुशावरत बाद इफ्तखार गिलानी के वजीर आजम बनाने जो फैसलो किया बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट से चूंड किया आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम की चूंड सुभाणे वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुकर्रर सऊदी सफीर की अलविदाई मुलाकात वजीर आजम सऊदी सफीर के जिम्मेवारियों बेहतरीन अंदाज में निभाने से मुबारक दिनी शहबाज शरीफ चाहे तो खिते में अमुन इस्तेकाम के कयाम लाए सऊदी किरदार सारा जोगो है पाकिस्तान ए सऊदी अरब जहा लागापा भी मजबूत थिया है सिंध हाईकोर्ट में मंशात केस में गिरफ्तार बिन जणन की जमानत वाली दरख्वास्त बुधनी जांच ऑफिसर की पेश न थियण से अदालत पारा कावड़ जो इजहार थाने के जांच ऑफिसर के हथकड़ी हणी अदालत में पेश करण जो हुकुम अदालत में पेश थियल अहलकार बुधायो तो जांच ऑफिसर के वठण वो हुयस घर मौजूद न हो जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो रिमार्क्स डींदे है तो जांच ऑफिसर के पेश न कयो वो तो एएसआई के जेल मोकलो वो वारे मेजरी पानी की कोर्ट खिलाफ जेयूआई के सर से एहतजाज फाजल राहू चौक से कुरान फानी कर एहतजाज जो धरणो वो है वारे तालके में पानी को खत्म करने जो मुतालबो किया अगवाणन है तो वारे तालके की शाख में अगर पानी न पौतो तो असा वारे के हर शाख से कुरान शरीफ जहा खत्मा पढ़ी हुक्मरान के खिलाफ एहतजाज कंदा रहंदी जरवार वेझो उड़ी वगे नींगर फोत केतरा ही बार उड़ी में मुबतला गोठ अकबर गबोल में उड़ी की बीमारी पखेड़ी वही उड़ी में मुबतला बिन साल शाहजे वलिद मुनवर गबोल फोत केतरा ही बार बीमारी में वरतल सेहत खाते नोटिस न वरतो गोठाणा परेशानी जो शिकार बलोचिस्तान के इलाके सोबतपुर वेझो फुर मजामत सब्जी विक्रो कंदड़ पोरेत गोलियों हणी कतल डेरा मुराद जमाले के इलाके हासिलवार लग हथियारबंद न्याज खाणी के जर्गमार बनाया मजामत करण से हथियारबंद पोरेत के गोलियों हणी कतल कर मोटरसाइकिल रकम खणी फरार थी

पीर जो गोठ में वधंदड़ बदमनी खिलाफ़ शहरन जो रैली ऐं धरणो शहरन पीर गोठ में वधंदड़ बदमनी खिलाफ़ शहरन रैली कढी रासदी गेट वटि धरणो हयो। एहतजाज कंदड़ जो चवण आहे त पीर गोठ शहर में बदमनी चोट चढ़ी वई आहे। ॾींहुं ॾिठे शहरन खां फुरूं थी रहियूं आहिनि। ॾुआरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे अमन बहाल करायो वञे।

0: उबावड़ो वेझो घर जी भित किरण सबब नींगरी फोत भी जख्मी गोठ मुको डहर में घर जी कच्ची भित किरण सबब ज़ैनब दायो फोती वही रशीदा दायो जख्मी थी पई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
6: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
10: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्त

0: डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खनो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331-252-5786।
4: जी हाँ 2315-5786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर

0: आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: लाइट एडमिन महबूब अली मला 0301-72-9
1: चलती रही दिल में उदासी अंधेरों से लेके रोशनी तक खामियों से खामोशियों तक होश से लेके मदहोशियों तक अफसोस नहीं के अफसाने लिखे वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर खुदा तू देता है बेहिसाब मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब फिर रही बहार की कमी बस किस्मत हमारे ही हाथ में है उसके इख्तियार की है कमी बस वो लोग भी गुजर गए वो घर भी जल चुके वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे जख्म तो भरेंगे दोस्त वक्त की मरहम में शिफा है पर वक्त पे रहे मैं दोस्त वो कब किसी के लिए रुका है झुके ना सर फैले ना हाथ हमारे अब बस यही दुआ है कभी कभी आए सोच जो हुआ वो ठीक ही हुआ है सबर से सबक जो मिले हैं सबर से अब मेरी सुलह है कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन। कहाँ सुना, माफ कीजिएगा। शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप। जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं किस्मत चुगताई, कैसे किस्मत खुलाई। आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a the bad the marshal mad the mirror instinct animalistic mad magician, yeah, mathematician. I never take second position. I'm getting ballistic, cataclysmic, billabulously, dick who meticulously, dust very medicinal say, love kiya maine kalam se, such cola maine kasam se, rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke, karte kab se, baatein pakki, baatein kacche, I've had enough of it, but I keep going, got no option but to keep flowing, keep the toxic out of my zone, ducking the sheep up me off of my throne, but before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my phone.

ध्यान मेरा और हम अकेले ही जलते रहे, चले ये शाम अब दिन चले, चलो रोशनी की सिर्फ चले, अपनी रात पे यकीन मेरा, अजाए मुझे ये यकीन करे, हकीम है कल।

0: तो इस सारी चीजों के अंदर दरख्त का एक अहम किरदार है। बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत को कम करना चाहिए तो या फिर परिंदों और जानवरों को पनाह भी चाहिए तो हमारे माहौल को खूबसूरत बनाना भी चाहिए। इस सारी चीजों के लिए जो अहमियत रखता है वो हमारा दरख्त रखता है। तो दरख्त हमारे लिए बेहद अहम जरूरी है, आलूदगी की गर्मियों से भी रोकता है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई दरख्त लगाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया इस वक्त।
1: जी जी कंटिन्यू कीजिएगा।
0: मैं इस बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू रख रहा हूँ एक इस चीज पे कि भाई आज का टॉपिक जैसे हमारा कंसर्न है बच्चों के साथ कुशलकारी के बारे में तैलीम देना क्यों जरूरी हो जाती है, तो बच्चों को सिर्फ बताना काफी नहीं होता, दरख्त अहम है बल्कि उन्हें ये अमली तौर पर उसका हिस्सा बनाना होगा। अभी कैसे बनेगा दरख्त के बारे में हम कैसे उन्हें आगाही देंगे, तो इसपे देखें मेन जो अहम किरदार होता है ना वो असातिज़ा किराम का होता है जो स्कूल के अंदर उन्हें गाइड करते हैं। अब बच्चा उसको कैसे सीखेगा, बच्चा जो सीखता है वो एक तो अपने पेरेंट्स से सीखता है जो उनके साथ घर में होते हैं, दूसरा उनके असातिज़ा से सीखता है जो उनके साथ होते हैं। अब मैं ये कहूंगा कि भाई स्कूल के अंदर भी हम इस तरह से पौधे लगाएं और उन पौधों को लगाते वक्त उन बच्चों को भी साथ में लेके जाएं ताकि उन्हें हम ये चीजें करवाएं कि भाई ये पौधा हमने लगाया इसको पानी भी देना है इसकी देखभाल भी करनी है, और जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाता है और बच्चा उसकी देखभाल करता जाता है तो इस तरह से उनके साथ एक ताल्लुका जो है वो बढ़ जाते हैं, मतलब एक जज्बात जो उनके होते हैं वो ज्यादा अटैच हो जाते हैं और बच्चा फिर दरख्त की साइड पे और पौधों को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करता है।
1: बिल्कुल ऐसा ही जी, और दरख्त वाकई बहुत अहमियत रखते हैं और आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को हम आगे चल के इस बारे में किस तरीके से आगाही दे सकते हैं। अच्छा असद बलोच, आप हमें ये भी बताइएगा कि बच्चों को शजरकारी के बारे में तालीम देना क्यों जरूरी है।
0: मैम देखिये, अगर हम बात करें कि हमें माहौल एक साफ सुथरा माहौल चाहिए, वैसे तो हम पढ़ाई के हिसाब से भी देते हैं ना, लाइब्रेरीज वगैरह हर चीज बना के देते हैं, लेकिन उसके अंदर जब हमें ऑक्सीजन चाहिए या साफ सुथरा माहौल चाहिए सांस ले रहे हैं तो इन सब को फिर बेहतर बनाने के लिए भी दरख्त का ही किरदार पाए। तो साफ सुथरा माहौल बनाने के लिए हमें उन बच्चों को वहां से किसके साथ भी अटैच करना पड़ेगा।
1: ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है?
0: जी जी मैम बिल्कुल आवाज क्लियर है।
1: ओके जी, असद बलोच हमें ये बताइएगा कि शजरकारी से माहौल पर क्या मुस्बत असरात मुरतब होते हैं।
0: देखिए मैम, इस वक्त हम अगर बात करें कि गर्मियों में काफी ज्यादा शिद्दत हो चुकी है और क्लाउड चेंजेस जो है वो उसके ऊपर भी अगर हम देखें तो काफी चीजें आ जाती है, लेकिन शजरकारी एक हम तो ये कहते हैं कि भाई एक छोटा सा पौधा है लगा दो, आज लगा दिया कल उसको नहीं देखा बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन एक पौधा जब वो बड़ा होता है तो हमारी गर्मी की जो शिद्दत है उसको काफी हद तक कम कर देता है। अच्छा होता क्या है, मैं इस चीज के ऊपर एक रियल बात कर रहा हूँ कि ज्यादातर जब हम सपोर्ट करते हैं किसी को भी कम्युनिटीज के अंदर पौधे लगा रहे होते हैं तो काफी लोग सिर्फ उसका काम मतलब तस्वीरें बनाने तक होता है कि हमने भाई पौधे लगा दिए अब बातें खत्म हो गई, तो बात पौधे लगाने तक नहीं है, तस्वीर बनाने तक नहीं है, असल कामयाबी तब है जब वो पौधा बड़ा होकर एक मजबूत दरख्त बन जाए।
1: बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जहां तक देखा जाए हमारे तालीमी निज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह आपने कहा कि आजकल के दौर में शजरकारी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, तो हमें चाहिए मेरे ख्याल से कि हम अपने बच्चों को स्कूल की तालीम में भी ये तालीम दें और जो स्कूल के अंदर एक तालीमी निज़ाम होता है एक निसाब होता है उसमें भी ये चीज़ हम इंक्लूड कर दें। तो आप मुझे ये बताइए कि स्कूल में बच्चों को माहौलियाती शऊर जो है कैसे दिया जा सकता है, उनमें कैसे शऊर पैदा किया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल रुखसा साहिबा, इसमें देखिए स्कूल इस सिलसिले में तो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल कहूँ कि अगर बच्चों को क्लासरूम में माहौल के बारे में पढ़ाएं लेकिन उनके साथ साथ उन्हें अमृत सरगर्मियों में भी शामिल करें, जैसे क्लास में अगर चंद पौधे खरीद करके कुछ असातिज़ा मिलते हैं या फिर बच्चे मिलते उन्हें पानी दें रोजाना के बुनियाद पे, और फिर एक और चीज भी हो सकती है कि एक ग्रीन कॉर्नर बनाएं और उस बच्चों की जिम्मेदारी रखी जाए कि भाई बारी बारी आप सबने इनकी देखभाल भी करनी है। तो इस तरह से देखिए तालीम अमली जिंदगी से जुड़ती है, तो बच्चों से ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते। तो इसी तरह से हम ये एक्टिविटीज करेंगे तो बच्चे ज्यादा इनसे थोड़ा लगाव भी रखेंगे। जैसे कहते हैं कि भाई इलम के समंदर में अमल का एक कतरा अफजल होता है, तो भाई सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम अगर उसको अमली तौर पे भी लेके आते हैं तो बिल्कुल बच्चा उससे सीखना शुरू करता है।
1: बिल्कुल जी, वेरी वेल सेड। एंड मुझे ये बताइएगा, क्या सिर्फ दरख्त लगाना काफी होता है या इनकी देखभाल भी उससे ज्यादा जरूरी होती है?
0: बिल्कुल, ये बेहतरीन है क्वेश्चन है आपका। मैं यही कह रहा हूँ कि काफी जगह ऐसा होता है कि पौधे लगा दिए हमने, बात खत्म हो गई, तो भी बात पौधे लगाने तक तो काफी नहीं है, असल काम तो उसके बाद शुरू होता है। हमें उसे पानी भी देना है, जानवरों से बचाना भी है, उसकी हिफाजत भी करना है, उसे वक्त भी देना है। तो ये एक पौधा बिल्कुल ऐसे टाइम रहता है जैसे एक बच्चे को हम पाल के बड़ा करते हैं। तो हमेशा मैं यही समझता हूँ कि पौधा लगाना एक वादा है और उसकी देखभाल, उस वादे को पूरा करना है।
1: ओके जी, अच्छा आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो आप हमें ये बताइए कि बच्चे माहौलियाती आलूदगी को कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं?
0: हाँ, ये बेहतर क्वेश्चन है। इस पे थोड़ा सा मैं एक और टॉपिक से कंसल्ट करूंगा और एक और चीज भी इसके अंदर है। मैं देखिए, अगर देहाती लाइफ को हम देखें तो वहाँ पे माहौलियाती आलूदगी बिल्कुल कम होती है। अब शहर की निस्बत में या फिर बड़े बड़े जो शहर है उनकी निस्बत में छोटे छोटे शहरों को अगर देखा जाए तो वहाँ पे बीमारियां कम होती है, आलूदगी कम होती है। अब आलूदगी का जो ज्यादा बढ़ना है वो बड़े बड़े सिटीज के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे एक तो फैक्ट्रीज ज्यादा है। अब वहाँ से पैदा होने वाली आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए फिर हमें एक जो अहम किरदार होता है ना, वो दरख्तों का होता है। तो वहाँ पे दरख्तों को लगाने के बजाय काटा जाता है ज्यादातर। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चों को हम इस चीज के अंदर लेके आते हैं और बच्चे भी ये अपना किरदार अदा करते हैं तो वही दरख्त जब बड़े हो जाते हैं तो फिर माहौल के अंदर भी एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा हो सकता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हमें ये बताइएगा कि अभी रिसेंट अगर हम बात करें इस दौर की, जहां हमें दरख्तों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो दरख्तों की कमी हमारे लिए कितना बड़ा मसला है इस वक्त?
0: मैम बिल्कुल, देखिए नई जो बीमारियां हैं, स्किन के मसाइल हैं, वायरसेस हैं या सांस की कमी है, इस तरह के ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि जो चीज इन चीजों से रोक रही है उसको हम खत्म कर रहे हैं। इन सब की वजूहात दरख्तों की कमी है। अगर हम दरख्त इस तरह से काटते जाएंगे तो ऐसे समझे कि एक तरफ दरख्त कट रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरह के मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं।
1: ठीक है। अच्छा जिस तरह आपने बात की कि बच्चों को एजुकेट करना चाहिए शजरकारी से रिलेटेड, तो आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से हम बच्चों को इस तरीके से एजुकेट करते हैं प्लांटिंग के हवाले से, तो उनको कौन एजुकेट करेगा? मेरा आपसे ये सवाल है। मतलब उन लोगों को हम किस तरीके से शऊर दे सकते हैं जो हमारे बच्चों को आगे चल के शऊर दें, उन टीचर्स को, उन असातिज़ा को, उन पेरेंट्स को जिनको इतनी ज्यादा आगाही अभी तक भी नहीं है आज के दौर में, तो ये हमें बताइएगा प्लीज।
0: जी मैम, ये रियली एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखें, जैसे इस वक्त एचएफटी काम कर रही है और एचएफटी ये नहीं है कि सिर्फ पौधे दे रही है या फिर इस तरह से काम कर रही है, वो सेशंस भी करवाएं, मतलब एचएफटी जैसे सेशंस करवा रही है। तो जो भी ग्रीनरी के ऊपर काम कर रही है, दरख्तों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबसे अहम बात ये कि वो सेशंस रखें, उन पेरेंट्स को उन असातिज़ा के साथ ऐसे सेशंस रखें, पहले उन्हें आगाही दें कि भाई इस चीज की अहमियत क्या है हमारे मुआशरे के अंदर। और जैसे उनको अवेयरनेस आएगी तो फिर वही मैसेज हम कन्वे करते हैं उन असातिज़ा और पेरेंट्स के थ्रू उन बच्चों तक। फिर इस तरह से उन बच्चों को भी आगाह किया जाए, भाई ये मैसेज हमारा आप कम से कम 10 बच्चों तक अगर पहुंचाते हैं तो इस तरह से मेरे ख्याल में ये मैसेज हमारा काफी हद तक कन्वे भी हो सकता है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा असद बलोच, टाइम भी बहुत लिमिटेड है, तो आप हमें ये बताइए कि लास्ट में वो बच्चे जिनको हम प्लांटिंग के लिए एजुकेट करना चाहते हैं, वो वालिदैन जो अपने बच्चों को प्लांटिंग के लिए एजुकेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
0: जी मैम बिल्कुल, लास्ट में ये पैगाम हम जरूर उनको देना चाहते हैं जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं। तो भाई देखें, एक सिंपल सी पोएट्री है, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, تو ہمیں سب کو مل کے اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے, ماحولیاتی تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ ایک ایک پودا لگائیں, اپنے لیے لگائیں, اپنے آنے والی نسل کے لیے لگائیں, اور اس طرح کی بڑھتی ہوئی بیماریوں کو کم کرنے کے لیے بھی لگائیں. اور یہ سوچے نہیں آپ, یہ ایک بہترین پروگرام چل رہا ہے, اور اس پروگرام کے طرح ایسے سمجھیں کہ کافی ماشاء اللہ گیسٹ آتے ہیں اور کنوے کرتے ہیں کافی چیزیں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ آج سے اسٹارٹنگ کریں. اور
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: جیکڑے تواں کے میدے جی تکلیف, سینے جی جلن, کھٹیوں اگرائیوں, بخ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن, تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس, جیکو میدے جی خرابی ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ فائدہ مند کورس ہے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں, حمزہ دواخانہ, سونہری مسجد, ریلوے فاٹک, ماتلی. رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287. شفا میدا کورس, صحت مند میدو, صحت مند زندگی.
3: اکثر مان جو سوال ہوں اسا کے سی پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چھوتی دینی ونی تے جو اسا وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے, ہائی رسک ہوندا ہیں. انہاں کے علاوہ اسا جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تاں جے کرے تہاں کے ویکسین دے لائے عمر جی حد کونے, کیں جگہ تے ویکسین کیں عمر تے پولیو لگی سکے تو کیں عمر تے ویکسین کرے سکے تے ریشو ودی کا 10 سال کے گھٹا تاں جے کرے اسا جو ریکویسٹ آئے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگ رہا ہے.
4: خوشخبری صاف ہے, شفا پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
5: اواں جے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
4: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر, 500 ملی لیٹر, 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل,
5: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے, بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہے ہے.
4: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود آہے.
5: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
4: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار, شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے. ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920.
5: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر, ویجو سونیری بینک, بدین روڈ, ماتلی.
6: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
6: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 کھا رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
6: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
7: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
8: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری. چھا اما چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرایو. سیمنٹ جی جالی, بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 0300-2962-435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ, ماتلی.
9: خوشخبری अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
10: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
11: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
12: सुनते रहो GFM 90.4
13: क्या वहाँ पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहे आयो
14: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
13: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
14: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
13: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
14: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
13: 0331-252-5786
14: जी हा 231-525-786
13: GFM रेडियो नेटवर्क
14: सिंध जो आवाज़

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू, तो जरूर ज्वाइन करें. एंड साथ साथ हमारा सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज बोलो तो माने. तो आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से है कि लंबी लकड़ी से लटके लाल लीमू, लाल लीमू लटके लंबी लकड़ी से. ठीक है, ये कहना है और ये कहेंगे और कॉल्स आप लोगों के लेंगे 0300 11 34 88. इसके साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस

ओके जी, इसके साथ साथ हम गाना चेंज करेंगे एंड हम गाना प्ले करेंगे एक और हम प्ले करने जा रहे हैं जी ये वाला सॉन्ग जो कि मैं प्ले कर रही हूँ द वन एंड ओनली बिलाल सेठ की आवाज में. इसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और आपने कह के दिखाना है कि लंबी लड़की से सॉरी लंबी लकड़ी से लटके लाल नींबू लटके लंबी लकड़ी से. ठीक है, ये कहेंगे और जो ज्यादा सही से बोलेगा वो जीनियस बन जाएगा. ठीक है, तो गाना और गाने के साथ हम चलेंगे आगे. स्टे ट्यून्ड.

0: Cheese Sucker FM 8. सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन सवाल की दा हैं तो जड़े ऐसा जे बारन के पोलियो वैक्सीन लगी चुकी आ है तो हाने बाद में उनके केड़ी जरूरत पड़े थी। मोजो नालो हाफिज मोहम्मद इस्लाम नूनारी आ है। इन जो जवाब बिल्कुल आसान है। ये असाजा जे बार हन तो असाजी मामूली गफलत के करे जिंदगी भर माजूर रह वजन था। अगस्त में दह साल तीन जे बार पोलियो बूस्टर डोज जो है वो लाजमी लग रहा है। पोलियो जहा कुछ अगर जरात रह अल्लाह के हुक्म से वो खत्म थी वा ए बचो हमेशा के लिए महफूज रहो एन लाइ भी माजूरी सबब न बनो।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
7: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

Let's do this. Sing with me, everybody, if you know the song.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: लिंक के नाम दीदी है 5000 क्यूसिक पानी छोड़कर विवाह सिंध में पानी खोर दौरान पंजाब पारा जबरदस्ती खोरियल केनाल से आबाद गारन जा खदशा वधी वया। इरसा में सिंध की नुमाइंदगी की खामोशी ते भी सवाल बरकरार। जरियन जो चवण है इरसा में सिंध जो नुमाइंदो वे अरसे का ऑफिस ही न अची रो है।

0: रज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रखंदा निज़ामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-252-5786।
5: जी हा, 231-525-786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
8: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125252786
6: जी हाँ 2315525786
8: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842।
6: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो छिकताण में घटताई वाले पाकिस्तानी क्वेश्चन जो हिस्सो हो। पाकिस्तान रियासती सतह ते अफगानिस्तान से गालियों करण लाए तैयार है। अफगानिस्तान के पैंजे सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल थियण के रोकणो पवंदो। कतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे ते अज तेहरान पहुंचंदो। शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी ईरानी सियासी अस्करी क्यादत से मुलाकातू कंदो। अमेरिका ईरान विच में जारी छिकताण के खात्मे समेत खिते की सूरत हाल ते गालियों कई वेंदियूं। आबराहमन जी बहाली वारो मामलो भी गौर हेठ इंदो।

0: बाहर जाने अभी गायब हुए हूँ। किसी वर्जन में उन्होंने
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते।
0: हमने
1: जो भी है हमें दो
0: देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बाहि लगने वाले वाक्य के जिम्मेवार केर वफाकी हुकूमत में डी बे 14 मासूम बारन के सड़ी फोत थे वाले वाक्य की जांच मुकम्मिल न कर सकी। कार्रवाई भी रुगो वफाकी सेक्रेटरी तई महदूद पिम्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बया अमलदार बदसूर अहदन से मौजूद सड़ी फोत थे मासूम बारन जा वारिस इंसाफ जा मुंतजिर थाने की अदालत जांच लाए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाखिल दरख्वास्त। कौमी असेंबली के सेहत बाबत कमेटी पिम्स में सीमा बाहि लगने वारन बयान के शकी करार दई छो। पिम्स असेंबली के बयान में तजाद की दावा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स पारा पिम्स जो दौरो बाहि वाक्य जा तफसील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार है अमले के बयान में तजाद है। आलिया कामरान अमले के बयान में लगी रो है खेन रटो हणा वो है। डॉक्टर शाजिया सोबे अमले जहा बयान मुतजाद लगे तो ड्यूटी से मौजूद न हुआ। पंजाब जो डहाड तकरारी CG TP लिंक कैनाल के खोले छड़ा बिन्हीं तकरारी कैनाल जरिए 18,000 क्यूसिक पानी खर्च शुरू कर छो। पानी खोट के मुंह डींद सिंध में सूरतहाल संगीन थण जो खदशो जरियन मुझे पंजाब पारा मुबैना तौर जबरदस्ती खोलियल CG लिंक कैनाल में 13,000 क्यूसिक पानी छो वो है जडे त TP लिंक कैनाल में 5,000 क्यूसिक पानी छोड़ कर वो है। सिंध में पानी खोट दौरान पंजाब पारा जबरदस्ती खोलियल कैनाल से आबादगार जहा खदशा वी वा। इरसा में सिंध की नुमाइंदगी की खामोशी से भी सवाल बरकरार जरियन जो चवण है इरसा में सिंध जो नुमाइंदो वे अरसे का फीसी न अची रो है। सिक्योरिटी फोर्सिस जो KPK बलूचिस्तान में दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई 11 दहशतगर्द मार वह सिक्योरिटी जरियन मूजिब KPK के इलाके बनू ने लाडा में 7 दहशतगर्दन के जन्म भेड़ो कर वो। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मार वाया। दहशतगर्दन जो हिकथाक में तबाह बारूदी मवाद हथ वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सिस के भेटा पेश। शहबाज शरीफ चवा तो दहशतगर्दी खिलाफ जंग में कौम फोर्सिस से गड बीठल है। नवाज लीग पारा इफ्तखार गिलानी के आजाद कश्मीर जो वजीर आजम बणाने जो फैसलो वजीर आजम हाउस में मुशावरत बाद इफ्तखार गिलानी के वजीर आजम बणाने जो फैसलो कयो वयो। बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट से चूंडियो वयो। आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम की चूंड सुभाणे थींदी। नौशेरो फिरोजी अदालत में ज़ियाल अंजार के घर से हमले समेत 8 केसन की बुधड़ी NPP सरबराह गुलाम मुर्तजा जतोई मसरूर जतोई बया अदालत में पेश। अदालत समूरन केसन की बुधड़ी 24 सेप्टेम्बर तई मुलतवी कर छ्यू। मुर्तजा जतोई है केस कूड़ा इंसाफ की उम्मीद है।

0: मीरपुर माथेलो भरसा ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर खान वसीम अब्दुल जब्बार पंहिंजी घरवारीअ खे गोली हणी क़तल कयो। ज़ाल खे क़तल करण बाद जवाबदार अब्दुल जब्बार पाण खे बि गोली हणी आपघात कयो। वारे में ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ जेयूआई जे सर ते एहतजाज। फाज़िल राव चौक ते क़ुरान ख़्वानी करे एहतजाज जी धरणो हयो वियो। वाहे तालके मां पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो आहे त वारे तालके जे शाखनि में ज़रई पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख ते क़ुरान शरीफ़ जा ख़तमा पढ़ी हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। जरवार वेझो उड़ी वॻे नींगरी फोत। केतिरा ई ॿार उड़ी में मुबतला। ॻोठ अकबर गबोल में उड़ीअ जी बीमारी पखिड़िजी वई। उड़ीअ में मुबतला 2 सालनि जो शाज़े वलिद मुनवर गबोल फोत थी वियो। केतिरा ई ॿार बीमारी में वरितल। सिहत खाते नोटिस न वरितो। ॻोठाणा परेशानियुनि जो शिकार। नसीराबाद में फूड खाते जे नाजाइज़िन ऐं ॾाढाइनि ख़िलाफ़ सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन पारां सिंध बलोचिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन जो इंडस हाईवे ते धरणो। राइस मिल्स काज़ी पेट्रोल पंप वटि टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो आहे त ज़्यादतियूं बंदि न थियूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। पीर जो ॻोठ में वधंदड़ बदमिनियुनि ख़िलाफ़ शहरनि जी रैली ऐं धरणो। शहरनि पीर ॻोठ में वधंदड़ बदमिनियुनि ख़िलाफ़ शहरनि रैली कढी राशिदी गेट वटि धरणो हयो। एहतजाज कंदड़नि जो चवण आहे त पीर ॻोठ शहर में बदमिनी चोट चढ़ी वई आहे। ॾींहुं ॾिठे शहरनि खां फुरूं थी रहियूं आहिनि। ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे अमुन बहाल करायो वञे। उॿावड़ो वेझो घर जी भित किरण सबबि नींगरी फोत। ॿी ज़ख़्मी ॻोठ मुको ॾहर में घर जी कची भित किरण सबबि ज़ैनब दायो फोत थी वई। रशीदा दायो ज़ख़्मी थी पई। घर धणी नोमान दायो जो चवण आहे त घर जी कची भित भरिसां नींगरियूं रांदि खेॾी रहियूं हुयूं त भित किरी पई। पिथोरो शहर में पाणी पहुचाइण लाइ मिठड़ाओ केनाल में लॻंदड़ पाइप लाइन ख़िलाफ़ हज़ारें पोछड़ी जे आबादगारनि जो धरणो। टेल आबादगारनि एसोसिएशन जे सॾ ते आबादगारनि ऐं रहवासियुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि जो चवण आहे त मिठड़ाओ केनाल में लॻंदड़ पाइप लाइन इलाइक़े वासियुनि लाइ कातिल आहे। पोछड़ी जी ज़मीन बंजर बणिजी वेंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाराए।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247-3241-200। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। खुशखबरी
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल

0: ठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो

0: गीताई हमजा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जिलाए फोन करियो 0302-36-36-879-0312-01-287 सुकून एतमाद आई सेहतमंद जिंदगी दा कदम
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.4

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

मोहब्बत जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मोहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाक़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी ख़ुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे।
9: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
8: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती, छाओं में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह, अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर भी कर, अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर्बाद और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ में देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला, तू है मैं हूँ और गहरी खामोशी, हम दोनों भी नहीं सुनते जो कुछ भी ये कहती होगी।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकर तवाखे मैदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसाला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

फील्ड मार्शल जो ईरानी दौरो अमन लाइ जारी साल से वारंट क्वेश्चन जो हिस्सो हो। दौरे के अमेरिका से गंढण वारियूं खबरों बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ईरान जो व्यापार जारी है, एक तरफिन पाबंदी के अमल करण जा पाबंद ना हूं। पर तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्रावी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर ट्रंप के नुमाइंदे तौर तेहरान जो दौरो करण वाली खबरों के रद्द कन्दे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए घरू वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो चित्तौड़ में कटाई वाले पाकिस्तानी क्वेश्चन जो हिस्सो हो। पाकिस्तान रियासती सतह किते अफगानिस्तान से गाल तैयार है। अफगानिस्तान के पैं सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल थियण के रोकण पवन। कतरी वजीर आजम ईरान के अहम दौरे से अज तेहरान पहुंचन। शेख मोहम्मद बिन सानी ईरानी सियासी ए अस्करी क्यादत से मुलाकातू कन्द। अमेरिका ईरान विच में जारी चिकनाण के खात्मे समेत खिते की सूरत हाल से गालू क्यूं। आबनार मुझे बहाली वो मामलो भी गौर हेठ।

0: के बच्चे 10 जने अभी गायब हुए हूँ, किसी वजन पर उन्होंने
1: बच्चे डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते।
0: हमने जो भी है हमें दो देखी है ना, बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद जे पीएमजी अस्पताल में बाहे लगण वारे वाक़े जो जिम्मेवार केर? वफाकी हुकूमत बे डीं बे 14 मासूम बारन जे सड़ी फोत थियण वारे वाक़े जी जांच मुकमिल न करे सघी। कार्रवाई में रुगो वफाकी सेक्रेटरी ताईं महदूद, पीएमजी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बिया अमलदार बदस्तूर उहिदनि ते मौजूद। सड़ी फोत थियल मासूम बारन जा वारिस इंसाफ़ जा मुंतज़िर। साने जे अदालती जांच लाइ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल। कौमी असेंबली जे सिहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी मां बाहि लगण वारे बयाननि खे शकी करार ॾेई छॾियो। पिम्स अमले जे बयाननि में तज़ाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर्स पारां पिम्स जो दौरो, बाहि वाके जा तफ़सील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार चयो आहे त अमले जे बयाननि में तज़ाद आहे। आलिया कामरान चयो आहे त अमले जे बयाननि मां लॻी रहियो आहे त खेनि रटो हणायो वियो आहे। डॉक्टर शाज़िया चयो आहे त अमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि, लॻे थो त ड्यूटी ते मौजूद न हुया। पंजाब जो डांड तकरारी CG ऐं TP लिंक कैनाल खोले छॾिया। ॿिन्ही तकरारी कैनाल ज़रिए 18,000 क्यूसिक पाणी खर्च शुरू करे छॾियो। पाणी खोट खे मुंहुं ॾींदड़ सिंध में सूरत हाल संगीन थियण जो ख़दशो। ज़रियनि मूजिबि पंजाब पारां मुबैना तौर ज़बरदस्ती खोलियल CG लिंक कैनाल में 13,000 क्यूसिक पाणी छॾियो वियो आहे, जॾहिं त TP लिंक कैनाल में 5,000 क्यूसिक पाणी छोड़ कयो वियो आहे। सिंध में पाणी खोट दौरान पंजाब पारां ज़बरदस्ती खोलियल कैनाल ते आबादगारनि जा ख़र्चा वधी विया। इरसा में सिंध जे नुमाइंदे जी ख़ामोशीअ ते बि सवाल बरक़रार। ज़रियन जो चवण आहे त इरसा में सिंध जो नुमाइंदो वॾे अरसे खां आफ़ीस ई न अची रहियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो KPK ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं, 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि KPK जे इलाइक़े बनूल ऐं लाडा में दहशतगर्दनि खे ज़हन भेड़ो कयो वियो। बलोचिस्तान जे इलाइक़े खुज़दार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि जो हिकु थाक बि तबाह बारूदी मवाद हथ। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सिस खे भेटा पेश। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में क़ौम फोर्सिस सां गॾु बीठल आहे। नवाज़ लीग पारां इफ़्तिखार गिलानीअ खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत बाद इफ़्तिखार गिलानी खे वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। बैरिस्टर इफ़्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट ते चूंड कयो वियो। आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड सुभाणे थींदी। नौशेरो फेरोज़ जी अदालत में ज़ियाल अंजार जे घर ते हमले समेत 8 केसनि जी ॿुधणी। NPP सरबराह ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई, मसरूर जतोई ऐं ॿिया अदालत में पेश। अदालत समूरनि केसनि जूं ॿुधणियूं 24 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी करे छॾियूं। मुर्तज़ा जतोई चयो आहे त केस कूड़ा आहिनि, इंसाफ़ जी उमीद आहे। मीरपुर माथेलो भरिसां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। ॻोठ मीर ख़ान ने अब्दुल जब्बार पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो आहे। ज़ाल खे क़तल करण बाद जवाबदार अब्दुल जब्बार पाण खे बि गोली हणी आपघात कयो। वारे में ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ JUI जे सर ते एहतजाज। फाज़ल राहू चौक ते क़ुरान ख़वानी करे एहतजाज जी धरणो हयो वियो। वारे तालके मां पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। अॻवाणनि जो चवण आहे त वारे तालके जे शाखनि में ज़रई पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख ते क़ुरान शरीफ़ जा ख़तमा पढ़ी हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। आज़ाद कश्मीर में शहीद थियल रेंजर सहलकार शाहनवाज़ अली नायक जे बबर लोहे वेझो जनाज़े नमाज़ बाद तदफ़ीन। जनाज़े नमाज़ में पाकिस्तान रेंजर्स जे आफ़िसरनि, जवाननि ऐं शहरनि जी वॾे अंग में शिरकत कई वई। आज़ाद कश्मीर में रोड क्लीयरेंस ऑपरेशन दौरान बबर लोहे वासी रेंजर सहलकार शाहनवाज़ अली नायक खे हथियारबंदनि शहीद कयो हो। नसीराबाद में फूड खाते जे नाजाइज़नि ऐं ॾाढनि ख़िलाफ़ सिंध बलोचिस्तान राइज मिल्स एसोसिएशन पारां सिंध बलोचिस्तान राइज मिल्स एसोसिएशन जो इंडस हाईवे ते धरणो। राइज मिल्स काज़ी पेट्रोल पंप वटि टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो आहे त ज़्यादतियूं बंदि न थियूं त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842-842।
10: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
11: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
10: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
10: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
11: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
10: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0303920।
11: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
12: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
12: 03125257866।
8: जी हा, 2315525786।
12: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-3443-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
8: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर माण्हू जो सवाल हूंदो असां खे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे, त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: 나가겠답니다.
1: 밥 순행기 GFM 네트워크와 KTN 뉴스.
2: 디펜스 포스 필드 마샬 세이드 아심 무니드 visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the U.S.-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. It claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the U.S. are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
3: Field Marshal jo Irani doro amun lai jari saal se waran question jo hisso ho dore ke America sa galan warin khabrun be buniyad ahin Pakistan e Iran jo wapar jari ahe ek tarfin babandin de amal ja paband nahi hu par e tarjuman Tahir Hussain Drabi Field Marshal Said Asim Ghani je sadar Trump je numaindi taur Tehran jo doro karan wari khabrun ke rad kande cheyo ahe te फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो चिकताण में घटिताई वारे पाकिस्तानी कोशिशुनि जो हिसो हो पाकिस्तान रियासती सतह ते अफ़ग़ानिस्तान सां ॻाल्हियुनि करण लाइ तयार आहे अफ़ग़ानिस्तान खे पंहिंजे सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल थियण खे रोकणो पवंदो कतरी वज़ीर आज़म ईरान जे अहम दौरे ते अॼु तेहरान पहुचंदो शेख मोहम्मद बिन सानी ईरानी सियासी ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाकातूं कंदो अमेरिका ऐं ईरान विच में जारी छिकताण जे ख़ात्मे समेत ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं आबनहर मुज़ी बहाली वारो मामिलो बि ग़ौर हेठि ईंदो

0: हमें क्या पता कि बच्चे दस जने अभी गायब हुए हैं। किसी वर्जन पर उन्होंने
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते।
0: हमने जो भी है हमें दो देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बाहि लगण वारे वाके जो जिम्मेवार केर वफाकी हुकूमत बे डी भी 14 मासूम बारन जे सड़ी फोथण वारे वाके जी जांच मुकम्मल न करे सघी। कार्रवाई भी रुगो वफाकी सेक्रेटरी ताई महदूद। पिम्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बया अमलदार बदस्तूर उहदनि ते मौजूद। सड़ी फोथियल मासूम बारन जा वारिस इंसाफ जा मुंतज़िर। साने जी अदालती जांच लाइ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाख़िल दरख़्वास्त। कौमी असेंबली जे सिहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी मां बाहि लगण वारे बयानन खे शकी करार ॾेई छॾियो। पिम्स अमले जे बयानन में बेतसाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर्स पारां पिम्स जो दौरो बाहि वाके जा तफ़सील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार चयो आहे त अमले जे बयानन में तज़ाद आहे। आलिया कामरान चयो आहे त अमले जे बयानन मां लॻी रहियो आहे त खेन रटो हणायो वियो आहे। डॉक्टर शाज़िया चयो आहे त अमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि, लॻे थो त ड्यूटी ते मौजूद न हुआ।

पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाकियो इंतहाई दिल लुखाईंदड़ है। मुल्क में अस्पतालन जो हालतू बेहतर करण की जरूरत है। असि जिम्मेवार सिंध की हद ती है। वरी वजीर मुराद अली शाह एनिमल हेल्थ कोरंगी के दौरे दौरान मीडिया से गाल बोल मुराद अली शाह सिंध असेंबली में छह भेरा सूबे के विरहांगे खिलाफ ठहराव पास किया है। जैसे शौक है बीहर ठहराव आने सिंध जहा मू चाहन सिंध जो आवाम जो चाहो उ मुझी या अवान की ख्वाहिशन से कुछ भी नीन मकानी निजाम इदार बाख्तियार बनाए पीपुल्स पार्टी जो मंशूर है। सिंध वाहिद सूबो है जिते मकानी हुकूमतू मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज जो केपीके बलोचिस्तान में दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई 11 दहशतगर्द मारी वह सिक्योरिटी जरिए मूजिब केपीके इलाके बनून लाडा में 7 दहशतगर्दन के जहन भेड़ो किया वो। बलोचिस्तान के इलाके खुशदार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मारी वह दहशतगर्दन जो एक था तबाह बारूदी मवाद हथ वजी आजम शहबाज शरीफ पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सेज के भेटा पेश शहबाज शरीफ चाहिए तो दहशतगर्दी खिलाफ जंग में कौम फोर्सेज से गड बीठल है। नवाज लीग पारा इफ्तखार गिलानी के आजाद कश्मीर जो वजीर आजम बनाने जो फैसलो वजीर आजम हाउस में उशावरत बाद इफ्तखार गिलानी के वजीर आजम बनाने जो फैसलो किया। बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट से चूंडियो वो है। आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम की चूंड सुभाने थींदी।

0: मीरपुर माथेलो भरसां गोठाणे ज़ाल खे क़त्ल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। गोठ मीर खान अब्दुल जबार पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़त्ल कयो। क़त्ल बाद फरार थी वियो। पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
5: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
9: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
11: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
11: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 0331252576।
7: जी हा, 2315525786।
11: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 and 0312-24-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces, Field Marshal Sayyid Asim Munir, visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the U.S.-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. At claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defense Forces visited Iran as envoy of President Trump or the U.S. are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
2: फील्ड मार्शल जो ईरानी दौरो अमुन लाइ जारी सालसे वारनि कोशिशनि जो हिसो हो। दौरे खे अमेरिका सां ॻंढण वारियूं ख़बरूं बेबुनियाद आहिनि। पाकिस्तान ऐं ईरान जो वापार जारी आहे। हिक तरफ़ पाबंदियुनि जे अमल जा पाबंद नाहियूं, पर ए तर्जुमान ताहिर हुसैन द्रावी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जे सदर ट्रम्प जे नुमाइंदे तौर तहरान जो दौरो करण वारी ख़बरुनि खे रद्द कंदे चयो आहे त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो चित्ताण में घटताई वारी पाकिस्तानी कोशिशनि जो हिसो हो। पाकिस्तान रियासती सतह ते अफ़गानिस्तान सां ॻाल्हियुनि करण लाइ तयार आहे। अफ़गानिस्तान खे पंहिंजे सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल थियण खे रोकणो पवंदो। कतरी वज़ीर आज़म ईरान जे अहम दौरे ते अॼु तहरान पहुचंदो। शेख मोहम्मद बिन सानी ईरानी सियासी ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाकातूं कंदो। अमेरिका ईरान विच में जारी छिकताण जे ख़ात्मे समेत खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। आबनार मुज़ीबाली वारो मामिलो बि ग़ौर हेठि ईंदो।

0: तुम्हें क्या पता कि बच्चे 10 जने अभी गायब हुए हैं। किसी वजह से उन्होंने
1: बच्चे डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस एसएचओ नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते।
0: हमने
1: जो भी है हमें दो
0: देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बाहि लगण वारे वाके जो जिम्मेवार केर वफाकी हुकूमत बे डी भी 14 मासूम बारन जे सड़ी फोत थियण वारे वाके जी जांच मुकम्मल न करे सघी। कार्रवाई भी रुगो वफाकी सेक्रेटरी ताईं महदूद पिम्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बया अमलदार बदस्तूर उहिदनि ते मौजूद। सड़ी फोत थियल मासूम बारन जा वारिस इंसाफ जा मुंतज़िर। साने जी अदालती जांच लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाख़िल दरख़्वास्त। कौमी असेंबली जे सिहत बाबत कमेटी पिम्स में एसी मां बाहि लगण वारे बयाननि खे शकी करार ॾेई छॾियो। पिम्स अमले जे बयाननि में बि तसाद जी दावा। स्टैंडिंग कमेटी जे मेंबर्स पारां पिम्स जो दौरो बाहि वाके जा तफ़सील मालूम कया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार चयो आहे त अमले जे बयाननि में तज़ाद आहे। आलिया कामरान चयो आहे त अमले जे बयाननि मां लॻी रहियो आहे त खेन रटो हणायो वियो आहे। डॉक्टर शाज़िया चयो आहे त अमले जा बयान मुतज़ाद आहिनि, लॻे थो त ड्यूटी ते मौजूद न हुआ।

पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक़ियो इंतिहाई दिल दुखाईंदड़ आहे। मुल्क में अस्पतालनि जूं हालतूं बहितर करण जी ज़रूरत आहे। असांजी ज़िमेवार सिंध जी हद ताईं आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त एनिमल हेल्थ कोरंगी जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली में 6 भेरा सूबे जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ पास कयो आहे, जंहिंखे शौक़ु आहे ॿीहर ठहराउ आणे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि? सिंध जो आवाम जेको चाहींदो उहो ई थींदो। मुंहिंजी या अव्हां जी ख़्वाहिशनि सां कुझु बि न थींदो। मकानी निज़ाम ऐं इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूद आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सेज जो केपीके ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि केपीके जे इलाइक़े बनून ऐं लाडा में 7 दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। बलूचिस्तान जे इलाइक़े खुज़दार में ऑपरेशन दौरान 4 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि जो हिकु थाक बि तबाह। बारूदी मवाद हथ। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सेज खे भेटा पेश। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में क़ौम फोर्सेज सां गॾु बीठल आहे। नवाज लीग पारां इफ़्तिखार गिलानी खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत बाद इफ़्तिखार गिलानी खे वज़ीर आज़म बणाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। बैरिस्टर इफ़्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट ते चूंडियो वियो आहे। आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड सुभाणे थींदी।

0: मीरपुर माथेलो भरसां ॻोठाणे ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। गोठ मीर खान अब्दुल जबार पंहिंजी घरवारी राबिया खे गोली हणी क़तल कयो। क़तल बाद फरार थी वियो। पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। वारे में ज़री पाणी जे खोट ख़िलाफ़ जेयूआई जे सर ते एहतजाज। फाज़ल राउ चौक ते क़ुरान ख़्वानी करे एहतजाजी धरणो हयो वियो। वारे तालके मां पाणी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। अॻवाननि चयो आहे त वारे तालके जी शाखनि में ज़री पाणी न पहुतो त असां वारे जी हर शाख ते क़ुरान शरीफ़ जा ख़त्मा पढ़ी हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदा रहंदासीं। आज़ाद कश्मीर में शहीद थियल रेंजर सहलकार शाहनवाज़ अली नाय जे बबर लोहे वेझो जनाज़े नमाज़ बाद तकफ़ीन। जनाज़े नमाज़ में पाकिस्तान रेंजर जे आफ़ीसरनि जवाननि ऐं शहरनि जी वॾे अंग में शिरकत। आज़ाद कश्मीर में रोड क्लीयरेंस ऑपरेशन दौरान बबर लोहे वासी रेंजर सहलकार शाहनवाज़ अली नाय खे हथियारबंदनि शहीद कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहे।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबॉरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
9: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
9: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
11: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
11: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
11: 03132525786
6: जी हा 3135525786
11: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-33-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखंदे।
6: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर मान जो सवाल तो असा के पोलियो की वैक्सीन 10 साल तक छो थी दिनी वजे तो जो असके बार अक्सर कमजोर है उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असकी एरिया हाई रिस्क है ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके तो रेशो 10 साल का घट आ तेज कर असो रुकेश है सभी के बूस्टर डोज लगे
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: टू फैसिलिटेट एन एंड टू द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड रिन्यूड एफर्ट्स फॉर रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दैट क्लेम्स बाय सर्टेन क्वार्टर्स दैट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator.
2: दौरे के अमेरिका से गडण वाली खबरों बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ए ईरान जो व्यापार जारी है, एक तरफिन पाबंदियों के अमल करण जा पाबंद नहीं। पर डेही तर्जमान तायर हुसैन इंद्राबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर ट्रंप की नुमाइंदे तौर तेहरान जो दौरों करण वाली खबरों के रद्द करते है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए घरू वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरों चिकताण में घटताई वारे पाकिस्तानी कोशिशों जो हिस्सों हो। पाकिस्तान रियासती सतह से अफगानिस्तान से गाल तैयार है। अफगानिस्तान के पैं सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल थे रोकणो पवो।

0: अभी गायब हुआ हूँ। किसी वजन में उन्होंने
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते।
0: हमने जो भी है हमें दो नहीं देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: वफाकी राजधानी इस्लामाबाद के एम्स अस्पताल में बाहर लगन वाले वाक्य जो जिम्मेवार केर वफाकी हुकूमत बेडी भी चोड़ा मासूम बारन के सड़क फोत थियण वाले वाक्य जा जिम्मेवार जाहिर न किया। साने की जांच लाए चूडल कमेटी जांच शुरू कर छी। अमले खां लिखत में बयान तलब CCTV फुटेज भी तहवील में वी छी। कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नसीर तरण है तो जिंदगी की का भी कीमत ना है। साने की जांच बाद जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई थी। सुभाने ताई शुरुआती रिपोर्ट अची वेंदी। कौमी असेंबली की सेहत बाबत कमेटी पिम्स में AC में बाय लगण वार बयान के शकी करार दे छो। पिम्स अमले के बयान में भी तजाद की दवा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर पारा पिम्स जो दौरो बाय वाक्य जा तफसील मालूम किया। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार बलानी अमले के बयान में तजाद है। आलिया कामरान अमले के बयान में लगी रो कें रटो हणाय पो है। डॉक्टर शाजिया सोबिया अमले जा बयान मुतजाद लगे तो ड्यूटी ते मौजूद न हुआ।

एम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पेश आयल वाक्य अंटाई दिल धड़ेदड़ है। मुल्क में अस्पताल जो हालतों बेहतर करने की जरूरत है। असांजी जिम्मेवारी सिंध की हद ताई है। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कोरंगी के दौरे दौरान मीडिया से ॻाल्हि ॿोल मुराद अली शाह चयो त सिंध असेंबली छपेरा सूबे के विरागे खिलाफ़ ठहराव पास कयो आहे जंहिंखे शोक आहे बीहर ठहराव आणे। सिंध जा माण्हू छा था चाहिनि? सिंध जो अवाम जेको चाहींदो उहे थींदो। मुंहिंजी या अवां जी ख़्वाहिश सां कुझु न थींदो। मकानी निज़ाम ऐं इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण पीपल्स पार्टी जो मंशूर आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जिते मकानी हुकूमतूं मौजूदु आहिनि।

अछी थींदी त तव्हां असां सां गॾु शामिलु हूंदव। ऐं साईं यकीननि मौसम जेका आहे उहा बि हींअर ॾाढी सुठी ऐं शानदार मौसम आहे। उन शानदार मौसम खे अवां इंजॉय बि कंदा हूंदव ऐं उन शानदार मौसम में जॾहिं अवां मौसम खे इंजॉय कंदा हूंदव त तव्हांखे सुठो बि लॻंदो हूंदो। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे सुठो लॻंदो हूंदो त पोइ तव्हां असांखे ॿुधाइजो तव्हांखे मौसम कीअं थी लॻे। ऐं हा, तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी आहिनि जो तव्हांजो असां साण साथ आहे ऐं असीं बि तव्हां साण इनशाला साथ निभाईंदासीं। त पोइ पहिरियों ब्रेक वठणु चाहियां पियो अवां सां गॾु अवांजो यूनुस बकारी हूंदो, महफ़िल बि जारी सारी हूंदी ऐं ब्रेक खां पोइ अवांखे ॿुधाईंदासीं त अॼोके शो में कहिड़ो सेगमेंट कहिड़ी ॻाल्हि शामिलु करणु चाहियूं था। सो उनजो अवांखे करिणो पवंदो थोरो ओसीड़ो थोरो इंतज़ार। असां सां गॾु गॾु रहिजो अवां ॿुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GFM माथली 90.4। सो यकीननि प्यारे पंहिंजा पंहिंजे गसन ते हिकिड़ो ब्रेक वठूं था साज़ ऐं आवाज़ जे साथ खां पोइ इजो मिलूं था केॾा न वञिजो।

जी जनाब, वेलकम बैक। अहीं हम ॿुधो पिया पंहिंजो ई रेडियो जी एफ एम 90.4 मातली, ऐं आउं आहियां अव्हांजो पंहिंजो यूनिस बकारी। जी मौजूद दोस्तो, यकीन नवां सां अव्हांजी ॻाल्हियूं कंदासीं पिया, ऐं अव्हां जा ईंदड़ मैसेजिस बि शामिलु कंदासीं। उन सां गॾो गॾु कोशिशि कंदासीं त अव्हां साण सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं कजनि, प्यार भरियूं ॻाल्हियूं कजनि, ऐं प्यार भरियुनि ॻाल्हियुनि में अव्हां असां सां शामिलु हूंदो। ऐं यकीन जॾहिं अव्हां शामिलु हूंदा आहियो त असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। सो तव्हां बि शामिलु थी सघो था, ऐं असीं बि हूंदा आहियूं अव्हांजे मैसेज जे ओसीअ में। त पोइ जल्दी जल्दी सां मैसेज मोकिलियो, त ॾिसंदासीं अॼु असां सां गॾु केरु शामिलु थिए थो। हा त दोस्तो, महिरबानो क़दरदानो भेनरो ऐं भाइरो, प्यार ऐं पंहिंजा पंहिंजे गसम ते यकीननि अव्हां जूं असांजूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि, ऐं उन्हनि ॻाल्हियुनि में अव्हां जा मोकिलियल मैसेजिस बि शामिलु कंदासीं। दीदार असांखे राजड़ साहिबु लिखी मोकिलियो आहे त पंहिंजी ख़ामोशी निगाहुनि में ऐं ॻाल्हियूं ख़ासि दिलि में रखबियूं आहिनि, ऐं तुंहिंजी मुर्क में ॼण सॼी काइनात अखियूं झुकायूं था त चंड शर्मायो वञे थो। तुंहिंजी सादगी में ई मोहबत जी ॻाल्हि हूंदी आहे। हा, तुंहिंजी सादगी में ई मोहबत जी ॻाल्हि हूंदी आहे। थैंक यू वेरी मच मिठा माण्हू, कुर्ब तव्हांजा ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, ऐं सदाई सुखिया हुजो। ऐं हा दोस्तो, अव्हां बि असांखे सुठियूं ॻाल्हियूं लिखी मोकिलियो, ॾिसंदासीं त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो शामिलु। ऐं ही मौसम जेका आहे उहा तव्हांखे यकीननि ख़बर आहे त थधी मौसम आहे हींअर, ऐं जेको आगस्ट महीनो आहे उहो सॼो हिन दफ़े थधो रहियो आहे। जेतोणीकि बरसातूं घटि पियूं आहिनि, पर पोइ बि मौसम थधी रही आहे। ऐं हींअर सारियाल जो जेको फ़सुलु आहे उहो काफ़ी इलाइक़नि में तयारु थी रहियो आहे। किथे थोरो लेट सां पोखियो वियो आहे, ऐं किथे जेको अॻुवाट पोखियल आहे उहो पची चुको आहे, उते लहे पियो। पर लाड जे इलाइक़नि में ख़ासि तौर ते ही जेके इलाइक़ा आहिनि, बदीन टंडो, मोहम्मद ख़ान, हैदराबाद, हिननि इलाइक़नि में अञा बि जेके इलाइक़ा आहिनि, इन्हनि ज़िलनि जा जेके नंढा हेठाई वारा इलाइक़ा आहिनि, उन्हनि में अञा सारियूं जेको आहिनि उहे पोखियूं वियूं आहिनि देरि सां। सो उहे पोखजी रहियूं आहिनि, किथे पची रहियूं आहिनि, किथे कीअं, बहरहाल उन्हनि जो प्रोसेस जारी आहे। ऐं जिन जिन महिरबानी असांखे हाणे हाणे जॉइन कयो आहे, उन्हनि सभिनी खे वरी बि वेलकम चवंदासीं, भलीकार चवंदासीं। ऐं साईं मुंहिंजा कंहिं केॾो न ख़ूब चयो त जॾहिं मोहबत ते बि यकीन न रहे। जी हा, जॾहिं मोहबत ते बि यकीन न रहे, कॾहिं कॾहिं इंसान खे कंहिंजे बेवफ़ाई एतिरो त टोड़े छॾींदी आहे, जेतिरो पंहिंजी वफ़ादारीअ ते हिकु इंसान खे जेका यकीन हूंदी आहे उहा टुटी पवंदी आहे। ऐं उन यकीन खां पोइ पंहिंजे वफ़ादारी ते बि इंसान खे शक थियणु लॻंदो आहे, ऐं हर हिकु जुमिलो जेको आहे उहो हुनखे टोड़े विझंदो आहे, ऐं हर ॻाल्हि हुनखे मजबूर करे विझंदी आहे। हू सोचींदो आहे त हिन दौर में माण्हू जॾहिं वफ़ाऊं करे थो त उनखे जवाब में बेवफ़ाइयुनि जी बाज़ारि जा माण्हू छो था मिलनि, ऐं बेवफ़ायूं छो थियूं नसीबु थियनि। सो अव्हां असांखे ॿुधो पिया, जी एफ एम 88.4 असांजी फ्रीक्वेंसी आहे, 88 रेडियो नेटवर्क आहे, ऐं जी एफ एम 90.4 माथली बदीन जी आहे ट्रांसमिशन। कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि, वाहिणनि, वस्तियुनि ऐं बस्तियुनि में तव्हां ॿुधो पिया, असांखे ॿुधाए सघो था, पंहिंजो हाल अहिवाल ॾेई सघो था, त जीअं असां अव्हां जो ज़िकिर करे सघूं, अव्हां जूं ॻाल्हियूं करे सघूं, ऐं अव्हां जा मैसेजिस बि शामिलु करे सघूं। सो जनाब, अव्हांजे मैसेजनि जो यकीननि असांखे हर रोज़ जीअं अॼु बि इंतज़ारु आहे, ऐं असीं ॾिसूं त असांखे हाणे हाणे केरु जॉइन करण वारो आहे, केरु थो जॉइन करे। शफ़क़त जरवार साहिबु असांखे जॉइन कयो आहे, तमामु घणियूं महिरबानियूं। अयाज़ अली जरवार साहिबु असांखे अमनाबाद खां ॿुधे पियो, मोहबतूं अयाज़ अली जरवार साहिबु। ऐं फयाज़ जरवार असांखे ॿुधे थो, मिठा माण्हू तव्हां जूं बि तमामु घणियूं महिरबानियूं, थैंक यू। भलीकार साकिब जरवार साहिबु, अव्हां जूं मोहबतूं अव्हां बि असांखे यादि कयो आहे, तमामु घणियूं महिरबानियूं। सदाई सुखिया हुजो, शालाऊं सभिनी जी मुर्क मेरी न थिए, ऐं मोहबतुनि जे हिन मेले में शामिलु थियण ते अव्हांखे वेलकम था चऊं। मौज़िस ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम आहे जारी ओ सारी, हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अव्हांजो पंहिंजो यूनिस बकारी, केॾे न वञिजो, इजो वापसि थो अचां।

0: पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर मान जो सवाल होता है असा पोलियो की वैक्सीन दह साल छो थी डिनी वे तो असके बार अक्सर कमजोर है उनमें इम्यूनिटी तमाम घट होंगी हाई रिस्क हूं उन असाजी एरिया हाई रिस्क है ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके तो रेशो दह साल घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे
2: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारी की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद
7: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4
9: वेलकम बैक मौजूद सामाइन, ही आहे जीए एफएम 88 रेडियो नेटवर्क ऐं जीए एफएम 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियोस में अवां खे भलीकार चवंदासीं ऐं अवां ॿुधो पिया जीए एफएम मातली बदी 90.4 अवां जो आरजे अवां जे मेज़बान अवां सां मुख़ातिब आहे यूनिस बकारी ऐं मोहबतुनि जो सिलसिलो आहे जारी ओ सारी। ॾिसंदासीं त हाणे असांखे कंहिं कंहिं ज्वाइन कयो आहे ऐं किथां किथां खां ज्वाइन कयो आहे। सो जनाब असांखे जेको मैसेज पहुतो आहे उहो पहुतो आहे ॻोठ हुसैन सूमरो लाखाटी लॻे डंदो शहर खां। असांखे मिठो माण्हू ॿुधे पियो मोहम्मद हुसैन सुमरो साहिबु, वॾेरो मोहम्मद हुसैन सुमरा साहिबु, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ख़ुशि आहियो, चङा भला, मतारा जोड़। वॾेरे हुसैन सुमरे साहिब सां गॾु वॾेरो असां वटि अॼु शामिलु थियो आहे वाजिद ख़ान ऐं वॾेरो वाजिद ख़ान। अच्छा जी, तमामु घणी महिरबानी, मां तव्हांजो थोराए पियो। बल्कि कामरान वाजिद न, बल्कि कामरान सुमरो वॾेरो असांखे काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ यादि कयो आहे, इन जे करे कामरान खे भलीकार चवंदासीं। ऐं अवां सां गॾु शामिल आहे, जी हा जनाब, वॾेरो रिज़वान सुमरो। पहिरीं ॻाल्हि त तमामु घणनि ॾींहंनि खां पोइ अवां यादगिरी कई आहे वॾेरा हुसैन सुमरा साहिबु, तव्हांजो महिरबानी। वॾेरो हुसैन सुमरो लाखाटी खां ॾंदे शहर जे वेझो इहो ॻोठु आहे, हुतां खां असांखे ॿुधंदो आहे, यादि कंदो आहे। इहे कुर्ब आहिनि तव्हांजा, इहे मोहबतूं आहिनि ऐं इन्हनि मोहबतुनि खे असीं विसारे नथा सघूं। तव्हांजूं ॻाल्हियूं ॻाए सघूं था, तव्हांखे यादि करे सघूं था, पर अवांखे विसारणु असांजे वस में आहे ई कोन। साईं, मुंहिंजा कंहिं केॾो न ख़ूब चयो त कुझु दर्द अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके अखियुनि में ॻोढ़ा न पर रूह खे ज़ख़्मी करे वेंदा आहिनि। इहा हक़ीक़त आहे त कॾहिं कॾहिं माण्हूअ खे जेके दर्द मिलंदो आहे उहो अखियुनि मां महसूसु थींदो आहे। तव्हां आमतौर ते ॾुखायल माण्हू खे ॾिठो हूंदो त हू उन जा ॻोढ़ा वहंदा हूंदा, पर के अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके उन्हनि ॻोढ़नि खे बि पी वेंदा आहिनि, ॻोढ़ा बि सुकी वेंदा आहिनि उन्हनि जा, पर हुननि जो जेको रूह हूंदो आहे उहो ज़ख़्मी थियल हूंदो आहे। ऐं दोस्तो, आजज़ी हिकु महांगो अख़लाक ऐं नेकी आहे, उन जे आम ज़हन वारनि मां जा उमेद तव्हां नथा रखी सघो। ऐं नेकी इहा आहे त तव्हां हर कंहिं सां सुठो ॻाल्हायो, मिठो ॻाल्हायो ऐं प्यार मोहबत सां ॻाल्हायो। नफ़रतुनि जे लाइ हीअ दुनिया आहे ई कोन, छो त तव्हांजी हयाती पाण सभिनी जी हयाती थोरी आहे। ऐं हिन हयाती में जेकर असां मोहबतूं करियूं, मोहबत जे लाइ ज़िंदगी थोरी आहे, नफ़रत वण किथां भला हिन खे विच में एड था कयूं। ऐं कंहिं वरी लिखियो त ज़िंदगी मूंखे उहो सेखारियो आहे त माण्हू असांजे खामियुनि खां वधीक असांजे ख़ूबियुनि जे करे असांखां नफ़रत कंदा आहिनि या असांखे नापसंदि कंदा आहिनि। इहा हक़ीक़त आहे, कॾहिं कॾहिं को माण्हू ईअं हूंदो आहे जो उनखे मिसाल तौरु मां नथो वणां ऐं बसि उनखे हरूभरू नथो वणां, त पोइ का बि सुठी ॻाल्हि करियां, केॾियूं बि सुठियूं ॻाल्हियूं करियां, इहा ॻाल्हि हुनखे कोन वणंदी। छाजे करे त उहा ॻाल्हि आऊं पियो करियां ऐं आऊं उन शख़्स खे कोन थो वणां। सो वणण ऐं न वणण वारे जे करे का सुठी ॻाल्हि बि न ॿुधजे। इन जे लाइ मौला अली फरमायो त तव्हां इहो न ॾिसो त केरु पियो ॻाल्हाए, पर तव्हां इहो ॿुधो त हू छा थो ॻाल्हाए। जेकर को माण्हू सुठी ॻाल्हि करे थो, तव्हांजो दुश्मन बि आहे, त उनजी सुठी ॻाल्हि मां फ़ाइदो वठो ऐं सुठी ॻाल्हि जो क़दुर करियो। हा त दोस्तो, अवां जे मैसेजनि जे लाइ वरी तव्हांखे यादगिरी ॾियारियूं त जेकर तव्हां चाहियो था त असां वटि तव्हांजी यादगिरी, तव्हांजो अहसासु पहुचे, त असांखे मैसेज हीअं था करे सघो। तव्हांखे लिखणो आहे MTI, मैसेज टाइप कंदा, लिखंदा MTI, हुन खां पोइ थोरो स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888 यानी 8881 असांजो नंबर आहे, हुन ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। असांखे अवांजो मैसेज बिल्कुलु अवां जहिड़ो ई सुठो लॻंदो आहे त तव्हां असांखे यादगिरी ॾियारण जे लाइ हिकिड़ो मैसेज मोकिले छॾियो, त पोइ ख़बर पवंदी तव्हां असांखे यादि कयो आहे। ओके जनाब, त पोइ बिना देरि जे मां हिकिड़ो ब्रेक थो वठां ऐं ब्रेक बि उहो जेको नंढिड़ो ब्रेक हूंदो, कमर्शियल ब्रेक हूंदो, उन खां पोइ वापसि ईंदुसि, तव्हां सां ॻाल्हियूं कंदुसि, छो त मुंहिंजो साथ तव्हां सां 9 वॻे ताईं जुड़ियल आहे। 9 वॻे ताईं तव्हां सां ॻाल्हियूं कबियूं ऐं प्यार पंहिंजा ऐं पंहिंजा रंग खणी तव्हां सां ॻाल्हियूं कबियूं, तव्हां उमेद आहे त साथ निभाईंदा। त पोइ मां थोरी देरि में वापसि अचां, त तव्हां मूं सां गॾु आहियो न? हीउ गीत ॿुधी वठो, हीउ ट्रैक ॿुधी वठो, बाक़ी ॻाल्हियूं ब्रेक खां पोइ।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबब न बणंदो।
4: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
5: वेलकम बैक मज़ी सामीन, ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GA मातली वदीन FM 90.4। ऐं अवां ॿुधो पिया अवांजो पंहिंजो शो, जंहिं शो जो नालो आहे यकीनन जी हा रस रिहाण। रस रिहाण शो में यूनुस बकारियो साथ निभाईंदड़ तमामु मौज़ भेनरुनि ऐं भाइरनि जूं महिरबानी, लख थोरा अवांजा तव्हां असांखे यादि कयो पिया, असांखे मैसेज कयो पिया। ऐं हा, अवांजा मैसेज असां जीअं जीअं पहुचनि पिया शामिल कंदा हलूं। हिकिड़ो मैसेज पहुतो जंहिंमें लिखियलु आहे अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। इहो मैसेज असांखे पहुतो आहे शहर गुलाब लगारी जे वेझो ॻोठु आहे बाशम खान रिंद जो। ऐं उतां खां असांखे जॉइन कयो शाइर गाज़ी खान रिंद साहब, अवांजो महिरबानी शाइर गाज़ी खान रिंद साहब। ऐं फैज़ान अली रिंद, शहज़ाद अली रिंद, रिज़वान अली रिंद ऐं नंढड़ी कोनैन ज़हरा रिंद असांखे ॿुधे पई। ऐं लिखनि था त आपके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा आहे, अल्लाह आपको ख़ुशि रखे। आमीन सुम आमीन। तव्हां लिखियो फौज़िया सुमरो ॿुधायो, बिल्कुलु फौज़िया सुमरो हिन शो जो हिसो हूंदी। अवां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं शाइर गाज़ी खान रिंद साहब, अवांखे भलीकार था चऊं। तव्हां तमामु घणे प्यार ऐं पंहिंजा ऐप सां यादि कयो आहे। असांजी दुआ आहे त सदाई सुखिया हुजो, शाल अवांजी मुर्क मेरी न थिए ऐं शाल ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो। तमामु घणियूं मोहबतूं अवां सभिनी जूं ऐं अव्हांखे चवंदासीं भलीकार। दोस्तो, जीअं त मूं पहिरीं ज़िक्र कयो त ज़िंदगीअ में इलाही सारा अहिड़ा बि माण्हुनि जा रंग ऐं रस्ता हूंदा आहिनि। कॾहिं कॾहिं रस्ता मुंझियल हूंदा आहिनि, पर जेके रिश्ता सुठा हूंदा आहिनि, वास्ता सुठा आहिनि, तालुकात सुठा आहिनि, त ज़िंदगी बि बेखौफ़ गुज़रंदी आहे ऐं तमामु शानदार गुज़रंदी आहे। पर कॾहिं कॾहिं ईअं हूंदो आहे त माण्हू जेतिरो सुठो हूंदो आहे उनखे रस्ता बि कठिन मिलंदा आहिनि त रिश्ता बि कठिन मिलंदा आहिनि। सो बहरहाल हिमत वारो त उहो ई माण्हू हूंदो आहे जेको इन्हनि सभिनी शयुनि खे हिमत साण अॻिते वधंदो आहे, इन सभिनी शयुनि खे नज़रअंदाज़ कंदो आहे। ऐं साईं मुंहिंजा, इंसान जूं सभई परेशानियूं जेके आहिनि उहे हिकु ॾींहुं ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि ऐं इहे परेशानियूं हमेशह जे लाइ न आहिनि हूंदियूं। ऐं दिलि जो दर्द, अखियुनि जा ॻोढ़ा, रूह जी थकावट सभु ख़ामोश थी वेंदी आहे जॾहिं इंसान जे पंहिंजो वञणु थींदो आहे। पर छो न असीं जीअरनि खे हिक ॿिए जा सहारा बणिजी जीअरे विझूं त जेको माण्हू ॾुखारो न हुजे, कंहिं माण्हू खे ॾुख ऐं तकलीफ़ जो अहसासु जेको आहे उहो परेशान न करे। सो बहरहाल अवां सां ॻाल्हियूं त तमामु घणियूं थींदियूं रहंदियूं ऐं अवां बि जेकॾहिं यादि करणु चाहियो था त हिकिड़ो प्यारो प्यारो मैसेज असांखे मोकिले छॾियो। दोस्तो, सियाणा चवंदा आहिनि त बादशाहनि खे शिकायत छा कजे, बादशाहनि खे शिकायत छा कजे, हुसन वारनि खे वरी हिद

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फील्ड मार्शल शहजाद से मुनीर सां कुवैत के दिफा वाले वजीर शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सलीम अल सबा की मुलाकात। ISPR मुलाकात दौरान गडल दिलचस्पी वाल मामलों इलाकई सलामती दिफाई सहकार से गालू कई हुई। बिन्हीं अगवाड़न पारा बेतरफन लागापन दिफाई सहकार के मजबूत करने वो अजम अर्जा। कुवैती दिफा वाले वजीर शेख अब्दुल्ला की अगवाणी में ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात। पाकिस्तान कुवैत विच में दिफाई सहकार मजबूत करने लाय प्रोटोकॉल माहिदे 2026 ते सहीयूं। नए माहिदे तहत पाकिस्तान की हथियारबंद फौज कुवैत की हथियारबंद फौज के मुख्तलिफ शोबन में सहकार फराहम कदियों। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ है बिन्हीं मुल्कन विच में थियल माहिदो गडियल एतमाद एहतराम गडियल स्ट्रेटेजिक मफादन की अक्कासी करे तो।

सुख्या हो जो। जी जनाब, साज ऐं आवाज़ साथ में अवां जो यूनुस बकारी अवां सां जुड़ियल हिन नवे वॻे ताईं। अवां खे का ॻाल्हि वणे थी त मैसेज कयो, तरीक़ेकार आहे लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888 यानी 8881 ते मैसेज असांखे मोकिले छॾिजो, असीं अवां जा मैसेज शामिलु कंदासीं। ऐं साईं मुंहिंजा कंहिं चयो त जंहिंखे तव्हां विञाइण नथा चाहियो, जी हा, जंहिंखे तव्हां विञाइण नथा चाहियो त उन खे बहस में हाराइण जी कोशिशि न करियो, जीअं उनजी तव्हां दिलि खटी सघो ऐं साथ हमेशह क़ाइमु रही सघे। कॾहिं कॾहिं माण्हू छा कंदो आहे, बहस ग़लति बहस करे पंहिंजे सुठे इंसान खे हाराए ऐं पाण नाकाम थी वेंदो आहे। सो बहरहाल अवां सां ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं, हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे, मां जो वापसि अचां पियो, बाक़ी ॻाल्हियूं कंदासीं। ब्रेक खां पोइ केॾांहुं न वञिजो, प्रोग्राम आहे जारी ओ सारी, नंढड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो यूनुस बकारी।

0: वेलकम बैक वाज़ सामीन ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क आई GFM 88 रेडियो नेटवर्क के जो जो ही स्टूडियो है जो मामा ही शो बुदो पया यो आहे GFM 90.4 90.4 मातली बदीन आई आवाज जिन जिन इलाकन वाहनन वस्तियन बस्तियन तक पहुंचे पयो ता सबनी जो मोहब्बत ता सबनी वडा वडा जो तवा संगे बुदो पया आई अवन जे बुधण अवन मैसेज करण ते असी अवन शुक्रगुजार आहु बाकी असो साथ जो बचो है वो साथ अवे नाव है अभी जो चाहो था तस कुछ मवाद लिखो या का गाल लिखो तो मैसेज मोकलने तरीको है तुम पेर पेर लिख MTI उनका पे थोड़ो स्पेस दियो पेंजे गोठ शहर पाड़े को नालो लिखो पेंजो नालो लिखो असो नंबर है 8881 यानी 888 जी हाँ 888 ते असें मैसेज डायरे मोकिल पर शुरू में MTI लिख तो मैसेज पहुँचो जो मुझे स्टूडियो में स्क्रीन खुले है कंप्यूटर खुले पे उन जर MTI न लिख तो कें बे शहर जो कोड लगो तो उड़ा हलो वो वरी असें मयार न कजो पर ऐसी तो असेंगे सही सही केर तो याद करें केर तो मैसेज मोकिले ओके जनाब असके ज्वाइन किया यूनिजानी लिखे तो आऊँ तुझे तस्वीर के ये दिसंदो आया जिनको गरीबन जो बारड़ो शहर में महंगा रांदी का दिसी परेशान थींदो है हाय हाय छा तो ख्याल है यह हकीकत है तो कदें बारड़ा जो मासूम बार होंदा जैसे उन्होंने ख्वाहिशन वा रांदी का वी ना सकता तो उन्होंने ख्वाहिश होंगी वो जैसे शहर वेंदा उत टंगल दुकान से रांदी का दिसंदा या शोकेसन में रांदी का दिसंदा तो उन्होंने हसरत होंगी है तो काश असा भी रांदी का वी सकूँ सो बहरहाल अल सही कें शल सिका न रब पाक हर कें एतो डे जो हर इंसान जहाँ बचड़ा भी खुश होजन बार भी खुश होजन नंढा भी खुश होजन वा भी खुश होजन अमी भी खुश हो तो दोस्तों गल पे कईसी प्यारे पंजाइब की प्यारे पंजाइब में अज असो आवाज मुसाफरी तय करें पो पर वह मुसाफरी केतरी तय करें किथे तो पहुंचे वो अवं बुधाई असेंगे हूँ असेंगे का भी खबर कोने तो असी किथे किथे बुधा पे वनों पर मुख्य पक है तो रात इन पहर में परे परे ताई गूंजदड़ आवाज में असो आवाज अवं से शामिल थी वो हों से मुझा कदें कदें जो है इंसान जदे अकेलो हों परेशान हों मायूसी वे हालत में हों दोस्त गजी खिलण ही सब का दवा महसूस कह पर दोस्त तो होजन जो उनके दुख वाली तकलीफ में उनसा गड हुजन जो उन चेहरो मुरझायल तो उनसा गड खिलन कें मू के वजन जो मापो उन रुसण परचण के मयार से लगन घुर्जे यह हकीकत है तो रुसण परचण है उन अंदाजो तक तो हमराह जो वजन केतो है ये तवसा गड केतो वफादार थी सके तो ये केतो सचो थी सके तो बस औकात काफ़ी मानू घणन वक्तन पे ये कंदा तो तवसा अड़े मौके से नाराज थी वेंदा जैसे अवं के उन्हें जरूरत होंगी तनाह छड़ने के लिए बहाना गोल्दा रुसण जहा रस्ता गोले एक छे हलिया वेंदा सही मुझे सब का जो वो मुनाफिक काबिल नफरत दोस्त हों जो तड हुए फायदा वे ताए पे उथे वे वरी जदे जो दुख्य वक्त अचे तो मुखालफन से मिली वे तक अकेलो तनहा अकेलो तनहा कर छे वे सो बहरहाल अड़ी गाल भी कहसी अवं बुधा भला इन महल अवं मूड कड़ो है मूड सुठो है तो सुठे मूड वो तानू बुधाय या को ब्रेक वी अवे थोड़ी देर की इंतजार का वरी ज्वाइन कज कें लगे तक सुठो लगे ना तब चाहिंदा हों तो थोड़ो थोड़ो साह खड़ने मौक मिले सो मेहरबानी तहजो आई दुनिया जहाँ मुख्तलिफ डाँ उन गाले बुधाइंदा सो मुख्तलिफ डाँ अलग अलग कौल चवणी होंदन कें डाँ तो जिंदगी मुख्य उो सेखारे है तो मू असे खामियन का असे खूबियन के करे असा के ना पसंद कंदा सो बहरहाल शाल वाजी खूबियों सलामत होजन जैसे खूबियन के करे को मानू तक छे तो दे उको ही छे को मसलो कने तवासा अल्लाह गड है तवा अकेला ना आयो तवा कदे भी अकेला ही एहसास में न रहंदो इंशाल्लाह चो इंशाल्लाह थोड़ो मुस्कुरायो बाकी गाल कर ब्रेक का कदें न वनो छो तो प्रोग्राम जारी हो सारी ब्रेक का वापस अवजों यूनस बकारी
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ मोर को विश्वास की डोर से बंधा हुआ।
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
0: वेलकम बैक माझे सामाईन, ही आहे GFM 88 रेडिओ नेटवर्क। GFM 88 रेडिओ नेटवर्क जो GFM मातली बदीन FM 90.4 अवां ॿुधो पिया। अवां जी तमामु घणी महिरबानी लखत हो रहा जो तव्हां ग़ौर सां प्यार सां पंहिंजा ऐप सां ॿुधो पिया। उन्हनि तमामु मौज़ूज़ भेनरनि भाइरनि जी महिरबानी जिन असांखे ज्वाइन कयो आहे ऐं जिन असांखे मैसेजिस कया आहिनि। जेकॾहिं अवां मैसेज करणु चाहियो था त मौज़ूज़ ख़्वातीन हज़रात टाइप कयो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 888 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो। ॻोठ हाजी बशीर वरिया खां अब्दुरज़ाक वरिया साहिबु ॿुधे पियो, अब्दुल गफ़ूर उढे जो ॿुधे पियो ऐं डॉक्टर फिदा हुसैन दल साहिबु ॿुधे पियो ऐं अवां सां शामिलु आहे मिस्त्री अलादीनु उढे जो ऐं अमजद अली वरिया ऐं रऊफ़ उढे जो ॿुधे पियो ऐं अवां सां शामिलु आहे सरदार आशिक अहवाण। तमामु घणी महिरबानी, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ॻोठ सतूरो मकवाणू जाड़ा वाटर खां असांखे ॿुधे पियो सतूरो मकवाणू साहिबु, चंदर मकवाणू साहिबु, गेनू मारो दोस्त ऐं केवल मकवाणू ॿुधे पियो, लालचंद मकवाणू, वास्तो ॿुधे पियो, वास्तो ऐं वेलो ड्राइवर ॿुधे पियो सूफ़ी आबाद वारो। अवां सभिनी जूं तमामु घणी महिरबानी, मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां। नज़रपुर जो ॻोठु आहे कबूल खटियाण, सॉरी नज़रपुर जो ॻोठु आहे कबूल कीरियो जी, कबूल कीरियो खां असांखे ॿुधे पियो मोहम्मद शाह साहिबु। साईं महिरबानी लख थो रहा अवांजा। अवां लिखियो त रब नवाज़ खे सलाम ॾियो, मिठे रब नवाज़ खे अवांजा सलाम पहुची विया। तमामु घणी महिरबानी, मुहबतूं ऐं अव्हांखे बि चवंदासीं भलीकार, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, तारनि में चंड हुजो, खीर में खंड हुजो ऐं मेवनि में अंब हुजो। त दोस्तो महिरबानी क़दरदानो, अवां बि जल्दी जल्दी सां टाइप करियो। जी जी बिल्कुलु टाइप करियो, MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 888 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो। जेकॾहिं अञा मैसेज ईंदा त ज़रूरु शामिलु थींदा ऐं जेकॾहिं तव्हां मोकिलणु चाहियो था मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो। ओके जनाब, सो ॾिसंदासीं त अॼु असां सां साथ केरु निभाए थो ऐं यकीन अव्हांजो त हमेशह जीअं हमेशह साथ हूंदो आहे ऐं अॼु बि हूंदो। जेकॾहिं तव्हां असांखे ॿुधो पिया त तव्हांजो मैसेजनि वारो साथ बिल्कुलु बरक़रार हूंदो। हा त दोस्तो महिरबानी क़दरदानो, राति जो ई पहर जेको आहे उन जेको राति जो पहर हूंदो उन में जिते जिते बि आवाज़ु पहुचंदो आहे उहो अवां किथे किथे सुकून में हूंदा, किथे किथे ॿाराड़ी जे हिसाब सां मानी बि खाई वरिती हूंदी ऐं केतिरनि इलाइक़नि में मच्छरनि जो आज़ार हूंदो ऐं केतिरनि इलाइक़नि में तव्हां जेको आहे उहो मच्छर घटि हूंदो हारी ॿधी हूंदी ऐं किथे किथे ईअं हूंदो त पुराणो जेको ज़मानो हूंदो हो दुही दुखाईंदा हुआ माल ते त जीअं मच्छर न अचनि। पर मच्छरनि जे आधार जे हवाले सां जिते जिते मच्छर आहिनि असां उते जी इंतिज़ामिया खे गुज़ारिश कंदासीं, प्लीज़ तव्हां मच्छरनि जो स्प्रे करायो। असां काफ़ी जेको आहे ॻोठनि में, वाहिणनि में, वस्तियुनि में, इलाइक़नि में, शहरी इलाइक़नि में, ॿाराड़ी इलाइक़नि में मच्छरनि जे आधार जे करे जेको आहे नंढा ॿार तोड़े ॿुढा ॿार सभई जेके आहिनि उहे मलेरिया जो शिकार थियनि था, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो, जेके वायरल क़िस्म जूं वायरस जेके आहिनि उहे लॻनि था त माण्हू तमामु घणो परेशान थिए थो। इलाज महांगा आहिनि, दवाऊं महांगियूं आहिनि, डॉक्टरनि जूं फ़ियूं महांगियूं आहिनि, त उनजे करे ग़रीब ऐं ॿोझ माण्हू एतिरी हींअर मज़दूरी कोन्हे, कमाई कोन्हे जेतिरो उन्हनि जो ख़र्चो आहे। तंहिं करे प्लीज़ उन्हनि जे सिहत जे ख़्याल जे लाइ अव्हांजो जेको सिहत जो खातो आहे ख़ासि तौर ते उन में जेके स्प्रे मलेरिया उहे सिहत खातो कराए थो या टाउन कमेटियूं या म्युनिसिपल कमेटियूं कनि थियूं, उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त मिसकिननि जी मदद कयो, वाहिर कयो, हुकूमत जेके फंड ॾे थी उन्हनि खे जाइज़ नमूने सां हिकिड़े ख़र्चु कयो त काफ़ी बीमारियूं तकलीफ़ूं ख़तमु थी वेंदियूं। सो बहरहाल अवां सां ॻाल्हियूं बि कयूंसीं त ॻाल्हियुनि में अवां जा मैसेजिस तमामु घणा अचनि था ऐं यकीन असीं अवां सभिनी जा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं। वधीक ॻाल्हियूं अवां सां अञा जारी रहंदियूं पर हिकिड़ो नंढो ब्रेक जो टाइम अची वियो आहे, ब्रेक वठिणो आहे, उन खां पोइ वापसि अची अवां सां ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि ऐं जीअं पंहिंजे असांजे सिंध जे तमामु प्यारे शाइर जेको असांखां असां वटि नाहे रहियो डॉक्टर आकाश अंसारी साहब जो सुठो आहिनि त हिन दिल में ऐं दर्द हज़ार अथम वेही सूर मां कहिड़ा सलिया, सो सूर सलण जे लाइ त पर दिल जे दर्द के एकड़े पासे रखी फिलहाल आवा के बधाई उता एकड़ो जबरदस्त गीत गालियो कदासी बाकी पे केदा न वंजो छो तो प्रोग्राम है जारी हो सारी नडड़े ब्रेक के खपो वापस इंदो आवा ने पंजो यूनस बकारी

जनाब वेलकम भलीकार खुश आमदीद जेकर आवां बुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे GFM मातली बदीन FM 90.4 के तव्हांखे ॿुधाईंदो हला तव्हां सां गॾु तव्हांजो RJ मुखातिब आहे यूनस बकारी ऐं मोहबतुनि जो जेको सिलसिलो उहो आहे जारी उसारी। तव्हांखे यकीन ॻाल्हाईंदे तव्हां सां ॻाल्हियूं कंदे वक़्तु कीअं गुज़िरे पियो, असांखे पाण खे ख़बर ई कोन पई त वक़्तु कीअं गुज़री वियो। बहरहाल एतिरो ज़रूरु आहे त तव्हांजो साथ जेको हूंदो आहे उहो सुरीलो आहे। तव्हांजो तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं तव्हां जेकॾहिं असांखे ॿुधो पिया त ॾाढो सुठो लॻे पियो त तव्हां असांखे साथ बि निभायो पिया, मैसेजिस बि कयो पिया। ॾिसंदासीं त स्क्रीन ते मौजूदु मैसेजनि वारी लाइन में हाणे केरु केरु पहुची चुको आहे, कंहिंजो मैसेज पहुतो आहे। सो जी जनाब स्क्रीन मुंहिंजे साम्हूं आहे, मां खोलियां पियो स्क्रीन खे, स्क्रीन ते मैसेज पहुतो आहे। जी जनाब गुठ नूर मोहम्मद तुर्क खां असांखे हिकु दफ़ो ॿीहर हीउ चोथों मैसेज मोकिलियो आहे। अब्दुल गफ़ूर तुर्क साहबु तव्हांजो महिरबानी अब्दुल गफ़ूर तुर्क ऐं अली गुल तुर्क तव्हां सां गॾु ॿुधे पियो, वहां जूं बि तमामु घणियूं महिरबानियूं। एम अमीन तुर्क ॿुधे पियो, एम नईम तुर्क ॿुधे पियो, एम फ़हीम तुर्क ॿुधे पियो, एम अज़ीम तुर्क ॿुधे पियो, एम फ़रहान तुर्क ॿुधे पियो, तव्हां सभिनी जी तमामु घणियूं महिरबानियूं। ऐं एम आज़ान तुर्क ॿुधे पियो, सभिनी जा वॾा वॾा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो। हीउ तव्हांजो वरी बि असांखे हिकिड़ो मैसेज मिलियो, ॾाढी ख़ुशी थी त तव्हां असांखे यादि कयो आहे, तमामु घणियूं महिरबानियूं। ऐं बल्कि तव्हांजे टे मैसेज ॿिया गॾु गॾु पहुता आहिनि, ख़ुशि हुजो आबाद हुजो मिठा माण्हू, किरोड़े कुर्ब तव्हांजा जो तव्हां असांखे यादि कयो आहे ऐं मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां, भलीकार चवंदसि तव्हांखे थैंक यू। ऐं जनाब असांखे मैसेज मोकिलियो आहे बशीर आबाद खां। जी जनाब फैसल अहमदाणी साहबु मिठा माण्हू कुर्ब तव्हांजा, तव्हां असांखे यादि कयो आहे, तव्हां सां शामिलु थिया आहियो, तव्हांजूं इहे मोहबतूं तव्हांजा इहे अहसान कॾहिं विसारे नथा सघूं, तव्हांखे भली खार चवंदासीं। ऐं असांखे यादि कयो आहे सजण सांगीअ जी वांड थरपारकर मां गुलाब गुल लिखे थो त तव्हांजो प्रोग्राम ज़बरदस्त आहे, मिठी थरपारकर खां ॿुधां थो। मिठा माण्हू मिठी मां अवां ॿुधो पिया यकीननि, इहा त मूंखे ख़बर कोन्हे छो त मुंहिंजो अचणु नाहे थियो, पर बरसातुनि खां पोइ मिठी सरसब्ज़ ज़रूरु थी हूंदी, सावक थी हूंदी ऐं सावा सला फुटा हूंदा। सो मिठीअ जे ख़ूबसूरत रंगनि में राति जो पहर थधियूं हवाऊं ऐं थधाण महसूसु थींदी हूंदी त मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां। तव्हां पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां टाइम कढी असांखे ॿुधो पिया, बसि ॿियो असांखे छा घुरिजे, तव्हांजो तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं तव्हांजो थोरायतो आहियां, थैंक यू भलीकार चवंदासीं तव्हांखे। जी मज़िस ख़्वातिन हज़रात, राति जो पहर परे परे ताईं गूंजंदड़ आवाज़ GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो, ऐं अवां स्टेशन जेका जॉइन करे चुका आहियो उहा स्टेशन आहे मातली शहर जी, ऐं मातली शहर जे बिल्कुलु भरमा उॾार कंदड़ 90.4 फ्रीक्वेंसी अवां ताईं पहुचे पई। आवाज़ जा पखीअड़ा परवाज़ कनि पिया, मोहबतूं अवां जे नाऊं थियनि पियूं, दुआउनि जा दरवाज़ा अवां जे लाइ खुलियल आहिनि। धणी दर दुआ गुआ आहियूं त जिते बि हुजो ख़ुशि हुजो। साईं मुंहिंजा दोस्त सां इख़्तिलाफ़ु थिए त भली थिए, पर उन इख़्तिलाफ़ जे करे तव्हां इख़्तिलाफ़ु न रखो, थोरो परे थी वञो, पर दुश्मननि जी कतार में कॾहिं बि न बीहजो, छो त दोस्त तव्हां सां रुठो आहे त वरी तव्हां सां ठही वेंदो, पर उन जे दुश्मननि जी कतार में कॾहिं बि न बीहजो। इहो तव्हांखे हिकिड़ो नंढिड़ो अर्ज़ु हूंदो। ऐं दोस्तो ईअं बि माण्हू चवनि था त जिन खे ख़ुशि रखण लाइ पाण खे विसारियो आहे माण्हुनि, उहे अॼु बि पुछनि था त ठीकु आहीं। जी बिल्कुलु, कॾहिं कॾहिं ईअं ई थींदो आहे त तव्हांखे विसारे तकलीफ़ ॾेई करे करे माण्हू वरी पुछंदा आहिनि ख़ुशि आहीं। सो बरल बरल बरल छा चइजे। ऐं हीउ नालो कंहिं कोन लिखियो आहे मैसेज में, इहो लिखियो आहे त मुंहिंजे तबाहीअ जे पोयां फ़क़ति तुंहिंजो ई हथु आहे, पोइ बि आउं माण्हुनि खे चवंदो आहियां त सभु तकदीर जो लिखियलु हो। सुहिणो अंदाज़ आहे तव्हांजे लिखण जो, पंहिंजो नालो लिखणु तव्हां विसारे छॾियो आहे, लिखो आहे ॾाढो सुठो लॻे हा, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी ऐं मां तव्हांजो बि थोरायतो आहियां। दोस्तो जीअं मूं पहिरीं बि ज़िक्र कयो त मौसम जेका हीअ मच्छरनि वारी आहे, इन मौसम जो शिकार जिते हर माण्हू थिए थो, मां बि काफ़ी ॾींहंनि खां वठी बीमारी जे बिस्तरे ते हुयसि ऐं मस मस जेको बुखार ऐं मलेरिया जो हटियो आहे, खंघु खुड़को हुयो, उन मां कुझु जान छुटी आहे, तव्हां सां मुखातिब थियो आहियां। सो अॼु जेकॾहिं आवाज़ में तव्हांखे महसूसु थींदो हूंदो न त हमरा जहिड़ो तपियो पियो हुजे, सो मां बिल्कुलु तपियो पियो हुअसि, पर पोइ बि सोचियमि त अॼु मुंहिंजो प्रोग्राम आहे, मुंहिंजे इदारे जो हुकुम हो त मूंखे तव्हां सां मुखातिब थियणो, त तव्हां सां थियो आहियां। जेकॾहिं तव्हांखे का कमी पेशी महसूसु थींदी हुजे त माफ़ु करे छॾिजो। बाक़ी फ़िलहालु नंढिड़ो ब्रेक वठूं था, वापसि तव्हांखां मोकिलाइणो बि आहे,
केॾा न वञो, अवां जो यूनुस बकारी अवां सां गॾु हूंदो।

0: जी जनाब, वेलकम भलीकार खुश आमदीद ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM 90.4 मातली बदीन आई मातली में गूंजंदड़ी आवाज जिन जिन इलाइकन वाहण ने वस्ते ने बस्ते में गूंजे पियो तां सबनी जो मेहरबानी मनी दे यकीनन उनका आगे जो मां मोकलाया मुझे शो जो वक्त पूरा थी चुको है। सो अवां जे साथ ते मां तां जो शुक्रगुजार आया जो तमाम भरपूर साथ देनो हुयो आई। सो जनाब यकीनन उन वक्त के महसूस कयूं था त बस थोड़ी देर अग में शो शुरू थियो वरी ख़त्म थियो। वक्त इएं तेज़ी सां गुज़रे थो। वक्त जो क़दुरु उन्हनि खे हूंदो आहे जेके वक़्त जो अहसासु कंदा आहिनि, बाक़ी जेके वक़्त जो क़दुरु न आहिनि कंदा वक़्त बि उन्हनि जो क़दुरु न आहे कंदो। सो बहरहाल अवां सां ॻाल्हियूं कंदे मज़ो आयो, ॾाढो सुठो पियो लॻो त तव्हां सां अञा ॻाल्हियूं जारी रखिजनि। पर छा कजे, वक़्तु हिकिड़ो अहिड़ो आहे जिते जेको मुक़ररु थियल हूंदो आहे, हिन वक़्त खां हिन वक़्त ताईं असांखे वसाइण मुख़ातिबु थियणो हूंदो। सो बहरहाल इनशाला हाणे अव्हांजे दुआउनि सां अची विया आहियूं, अव्हां सां महफ़िलूं जारी रखबियूं ऐं असांखे जॉइन कयो आहे साजन साईं। लिखे थो, काश तूं बि ईअं मिली पवी हा जीअं तुंहिंजे नाव जा तमग़ा मिलंदा आहिनि। हाय हाय, वाह वाह, ज़बरदस्त। देरि सां पर ख़ैर सां अव्हां जॉइन कयो, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, भलीकार, तमामु घणियूं मुहबतूं, भलीकार, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ऐं हा दोस्तो, महिरबानी क़दुरदानो भेनरो ऐं भाइरो, तकड़ तकड़ में मां अपडेट कयां थो, स्क्रोल कयां थो। लिखे थो, काश तूं बि ईअं मिली पवी हा जीअं तुंहिंजे नाव जा तमग़ा मिलंदा आहिनि। हाय हाय, वाह वाह, ज़बरदस्त। देरि सां पर ख़ैर सां अवां जॉइन कयो, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, भलीकार, तमामु घणियूं मुहबतूं, भलीकार, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ऐं हा दोस्तो, महिरबानी क़दुरदानो भेनरो ऐं भाइरो, तकड़ तकड़ में मां अपडेट कयां थो, स्क्रोल कयां थो, त जेकर को पेज को मैसेज तव्हांजो अची वञे त शामिल करे वठां, पर जेकर न आहे त हाणे असां सां गॾु केरु हूंदो ऐं केरु थो मोकिले असांखे मैसेज। जी जनाब, हिकु दफ़ो ॿीहर हिकिड़ो मैसेज वधीक अची चुको आहे, उहो आहे ए जी हा, उहो आहे तुर्क साहिब जो ॻोठु आहे नूर मोहम्मद तुर्क, ऐं नूर मोहम्मद तुर्क खां असांखे जॉइन कयो आहे अब्दुल गफ़ूर तुर्क साहिब। अवांजी तमामु घणी महिरबानी ऐं अली गुल तुर्क तव्हां सां गॾु ॿुधे पियो, तव्हां सां शामिल अली गुल तुर्क ऐं अवां सां शामिल आहे अमीन एम अमीन तुर्क साहिबु। अवांजी तमामु घणी महिरबानी, मां तव्हांजो बि थोराए थो आहियां। एम नईम तुर्क, अवांजो बि तमामु घणी महिरबानी। ऐं फ़हीम तुर्क, तव्हांजो बि तमामु घणी महिरबानी। एम अज़ीम तुर्क, अवांजो बि तमामु घणी महिरबानी। फ़रहान तुर्क साहिबु, तव्हांजो बि तमामु घणी महिरबानी। ऐं आज़ान तुर्क, अवांजी महिरबानी। ही अवां महिरबानी जा खोड़ सारा गॾियल मैसेज हुआ जेके बार बार अची रहिया हुआ, ऐं तव्हांजो मां शुक्रगुज़ार आहियां जो तव्हां पंहिंजे प्यार जी पालोट कंदे असांखे पंहिंजा पंहिंजे इज़हार ऐं प्यार सां नवाज़ियो, तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी। दोस्तो, अवां खां पुछणो रुगो इहो त अॼोको शो तव्हांखे कीअं लॻो ऐं असांजा जेके मुख़्तलिफ़ शोज़ आहिनि उहे तव्हांखे कीअं था लॻनि, उन्हनि जो अपडेट ॾिजो। असां कोशिशि कयूं पिया त शोज़ खे अञा बहितर करियूं। ऐं साईं मुंहिंजा पंहिंजी मुहबत, पंहिंजी वफ़ादारी ऐं पंहिंजी नियत खे हर माण्हू ॾाढो साबित करण जी कोशिशि न करियो, छो त जंहिंजे दिलि में ख़ुलूस हूंदो आहे उनखे दलील ॾियण जी का बि ज़रूरत न आहे हूंदी। ऐं जेको तव्हांजी नियत ते शक करे वेही रहे उनखे बि केतिरा बि दलील ॾींदव तॾहिं बि हुनखे तव्हां मुतमिन नथा करे सघो। उन करे जेकर तव्हां सचा आहियो त तव्हांजी सचाई, तव्हांजी सोच, तव्हांजी तबियत मां ज़ाहिर थींदी आहे। दोस्तो, ख़ानदानी माण्हू कॾहिं बि कंहिंखे विढ़ाइण जी कोशिशि बि न आहे कंदो, ऐं जेको बेनसलो हूंदो उहो हमेशह चाहींदो त समूरा माण्हू पाण में विढ़ियल हुजनि, त जीअं हुनजी लय हुजे, हुनखे माण्हू साईं साईं करे। पर ख़ानदानी माण्हू हमेशह परचा ऐं हमेशह ठही हलण जूं ॻाल्हियूं कंदो। तव्हां ॾिठो हूंदो राजभाॻनि जा जेके चङा मुड़ुस हूंदा आहिनि, काफ़ी अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके कॾहिं बि न चाहींदा आहिनि त हुनजे राजभाॻ में को झेड़ो झटो हुजे, हमेशह अमन शांती हुजे। सो मुहबतुनि ऐं अमन शांती वारी असांजी हिन धरती ते तव्हां सदाईं मुस्कराईंदा रहो, शाद हुजो, आबाद हुजो। ऐं असांजी दुआ आहे त असांजो जेको मुल्क आहे, असांजी जेका मिटी आहे, इते मुहबतुनि जूं वर्खाऊं हुजनि, नफ़रतुनि जा नांग मरी वञनि, मुहबतुनि जा मोर पालजनि, जिन जे टहोकनि ते पूरी दुनिया
1: हर दिन हर पहर ज़िंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क
0: टहोकनि ते पूरी दुनिया ख़ूबसूरत नज़ारनि खे ॾिसंदी रहे। चङो, उन खां अॻे जो वक़्तु अचे, साज़ वॼे, आवाज़ वॼे ऐं मूंखे मोकिलाइणो पवे, बसि तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त हीउ मुंहिंजो शो अवां ताईं पहुचाइण लाइ मुंहिंजो मशीनी मददगार साथी स्टूडियो इंजीनियर रब नवाज़ ख़ासि खेली ऐं पंहिंजे मेज़बान यूनिस बकारीअ खे वरी मिलण ताईं मोकल ॾियो हिन दुआ सां, त जिते बि अव्हां जो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैरी ख़ैर हुजे। उस्तादनि वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं, निमन जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं अव्हां जो मुक़दरु बणजनि। साथ सलामत, सिक सलामत, अलाह निगहबान।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: गडियल दिलचस्पी वारनि मामलनि इलाक़ाई सलामती ऐं दिफ़ाई सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। इन्हीअ वणनि पारां बि तरफ़नि लाॻापन ऐं दिफ़ाई सहकार खे वधीक मज़बूत करण वारो अज़म वरचायो। कोची दिफ़ा वारे वज़ीर शेख अब्दुल्ला जी अॻवाणी में ख़्वाजा आसिफ सां बि मुलाक़ात। पाकिस्तान ऐं कुवैत विच में दिफ़ाई सहकार वधीक मज़बूत करण लाइ प्रोटोकॉल मुआदे 2026 ते सयूं। नए मुआदे तहत पाकिस्तान जी हथियारबंद फौज कुवैत जी हथियारबंद फौज के मुख्तलिफ़ शोबनि में सहकार फराहम कंदियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त ॿिन्ही मुल्कनि विच में थियल मुआदो गडि॒यल एतिमाद एतराम ऐं गडि॒यल स्ट्रेटेजिक मफ़ादनि जी अकासी करे थो।

0: आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
3: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-879 and 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: कास्ट आरसीसी घरन जो पकियो छितू लगरा लाए खुश खबरी छा अमा चाहो था अमा जे घरन जो छितू पकियो हुजन त कैश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगरा लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
6: सुनते रहो GFM 90.4

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों त असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पेरी पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थिए थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जे बार के करा तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्ज में जो महफूज रह।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीजनि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
9: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: साबन। दरिया सिम की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।